0: আকাশবাণী আগরতলা এবারে জানিয়ে দিচ্ছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠান সূচি। সকাল 6:10 সুভাষিত অনুষ্ঠানে শুনবেন চৈতন্য শিক্ষামৃত থেকে পাঠ। সকাল 6:15 অঞ্জলি অনুষ্ঠানে শুনবেন ভক্তিমূলক গান বিভিন্ন শিল্পীর কণ্ঠে। ককবরক অনুষ্ঠান হায়ম্নি খোরাং সকাল 6:25। সকাল 7:05 রবি কিরণ অনুষ্ঠানে শুনবেন রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী শ্রীকান্ত আচার্য। অভিজ্ঞাপন সকাল 7:45 অনুষ্ঠানে শুনবেন ইতিহাসের পাতায় স্মরণীয় ঘটনাবলী, শ্রোতাদের পাঠানো চিঠি, বিভিন্ন তথ্য, কর্মকালী বিজ্ঞপ্তি, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পরামর্শ এবং আবহাওয়ার পূর্বাভাস। সকাল 8:40 ককবরক যুব অনুষ্ঠান জায়নাক, দেশবন্দনা শুনবেন সকাল 9:10। সকাল 9:30 রয়েছে নজরুল গীতি বিভিন্ন শিল্পী কণ্ঠে। সকাল 10:00 হিন্দি ছবির গান। বিজ্ঞাপনদাতা আয়োজিত অনুষ্ঠান সকাল 10:30। সকাল 11:00 রয়েছে বাংলা ছায়াছবির গান। শুনলেন আজকের অনুষ্ঠান সূচি আকাশবাণী আগরতলা। আকাশবাণী আগরতলা আর কিছুক্ষণের মধ্যেই দিল্লি কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হিন্দি এবং ইংরেজি সংবাদ রিলে করে শোনানো হচ্ছে।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে ফরহত নাজ। मंत्रिमंडल ने देश में सेमीकंडक्टर के डिजाइन और निर्माण तंत्र को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमीकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
2: सेमीकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स हैं। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
1: भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू हो गया है। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो गया है। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमियों की भी क्षमता को मजबूत करेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी

0: परिषद की बैठक भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते सुरक्षा तथा रक्षा साझेदारी और गतिशीलता ढांचे द्वारा समर्थित भागीदारी की मजबूत गति को आगे बढ़ाएगी। उन्होंने ब्रसेल्स में तीसरी भारत यूरोपीय संघ व्यापार तथा प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक के बाद ये बात कही। भारत और बेल्जियम व्यापार तथा निवेश, हरित ऊर्जा परिवर्तन, नवाचार और प्रौद्योगिकी, कनेक्टिविटी, रक्षा सुरक्षा, क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों के साथ साथ लोगों में परस्पर आदान प्रदान जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करने पर सहमत हुए हैं। भारत बेल्जियम रणनीतिक संवाद की बैठक ब्रुसेल्स में आयोजित की गई। मध्य प्रदेश से पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर से संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए पहली सीधी उड़ान को झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय मार्गों के लिए प्रति उड़ान 15 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देगी। उन्होंने कहा कि पहले किराया लगभग 24 से 25 हजार रुपए प्रति सीट था, अब ये घटकर 12 से 15 हजार रुपए हो गया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की ये उड़ान सप्ताह में 4 दिन संचालित होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित भारत टेक्स 2026 सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत और विदेशों के प्रमुख कपड़ा निवेशकों और उद्योग प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। श्री यादव भारत मंडपम में मध्य प्रदेश पवेलियन का भी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में दोपहर में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क के बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली का लाल किला परिसर 15 अगस्त तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। लाल किला परिसर में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यह आदेश जारी किया है। 15 अगस्त को केवल सरकारी पास धारकों को ही लाल किला परिसर में प्रवेश करने की अनुमति होगी। अमरीकी सेना ने ईरान पर फिर से हमले शुरू करने की घोषणा की है। अमरीकी सेना की केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान में कई ठिकानों पर रात भर लगातार हमले किए गए। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की रथ यात्रा आज उड़ीसा के पुरी में शुरू हो रही है। लगभग 3 किलोमीटर की इस यात्रा का समापन श्री गुंडेचा मंदिर में होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हरा दिया है। फाइनल मुकाबले में रविवार को अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। सेमीफाइनल में पहला हाफ गोल रहित रहा। 55वें मिनट में इंग्लैंड के लिए एंथनी गॉर्डन ने पहला गोल किया। वहीं अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडिस ने 25वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को बराबरी दिला दी। 90वें मिनट में लुटारो मार्टिनेज ने गोल करके अर्जेंटीना को 2-1 से शानदार जीत दिलाई। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। The Union Cabinet approved the Semicon 2.0 with a budgetary outlay of 1,27,500 crore rupees to strengthen India's semiconductor design and manufacturing ecosystem. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav announced about the Cabinet decisions while briefing media in New Delhi yesterday. Mr. Vaishnav said, building on the momentum of Semicon 1.0, the scheme aims to further the government's commitment to putting India on the global semiconductor map. The minister said the cabinet also cleared the mobile manufacturing scheme with a budgetary outlay of 62,500 crore rupees aimed at scaling up domestic mobile phone production, deepening local value addition and strengthening India's position as a global electronics manufacturing hub. The government also approved 2 elevated corridor projects at Varanasi in Uttar Pradesh to improve road connectivity and reduce congestion and travel time. The cabinet also gave nod to 2 multi-tracking projects covering 4 districts across Odisha and Jharkhand, expanding the Indian Railways network by about 145 kilometers. It also approved the National Investment Policy for Urea 2026 for Atmanirbhar Bharat.

0: रोक्ने ब्रिटिसले पतका न तल दिखलाइ नै भारतले पतका न कुचोको दिशामा नै तिन तिहाइ साल न च्याङ्जाको आवनकारी भएन तिन तिहाइ साल न भारत पोखरण रेन्ज तिन तिहाइ साल पारमाणविक बोमान आमजकमुङ ख्लाइ काहाम आमजकमुङ ख्लाइ मानमाने तिन तिहाइ साल न आवनकारी भयो तिन तिहाइ साल न रासिया बा भारतनि कासा क्रायोजेनिक रकेट नि चुक्ति खामुङ न रासिया बादिल ख्लाइर माने आवनकारी तिन तिहाइ साल न 1996 बिसु हो कायनानि सिगां कक लाम सालाइपुरो रां पुसार लाइनानि हाइकेबा रां सानमानि आब्र रायदा साया हानायनाय कोर्टनि बिसिंतै साग्लाय जाखा तै कायफ्रु रां नालायमानि सानै नामानि आब्र बहायनो माजरा कतर तंगनैने आब बहायनो सुप्रिम कोर्टनि बिसिंतै जेने भारत हाक्तरनि बिसिंग साग्लाय जाखा आब्रखनो करै दिनै दिहाय सालो हायुं बेरामो मुं गोनां अरुणा आसफ आलि बंखा बिनीतिनि आसे मानिसाल बंखा खरगसा जिनि फ्रीडम फाइटर तै पोलिटिकेलनि एक्टिभिस्ट बहायनो बख्लाय दंमानि 1909 बिसुव ब आजायमानि आबनकारी बहायनो दिनै दिहाय सालो थैजानाय रकनि बिसुंग हंगांकाय अबंखा खरगसा बेलायखेनो हायुं बेरामो मुं गोनां जन एफ केनेडी जूनियर तै बिनि बिहिक केरोलिन बेसेट केनेडी तै बिनि बाहनक लरेन बेसेट बरक जतन कायसा बिरखुं देरामुंग बरक थैजामानि आबनि बागै बरकनो मैदुख्लायजाखौ आबरकनो कारिब जों सायमानो दिनि तिहाइ सालन मेरि टोट लिंकन बंखा आब्राहम लिंकननि बिहिक ब दिनि थैजामानि साल आबनकारिब अबंखा गवर्नर जर्जियानि बिनिब दिनि थैजामानि साल जर्ज बसबि आबनकारी दङ दिनि तिहाइ साल जन लर्ड बंखा इंलिसनि किबोर्ड न सोनामनाय बिनि डिजाइन न सोनामनाय तै आ किबोर्ड जे सोनामजाखफोरनि सिमिनाव हायुं गोनाङै दाबोब अबहायखेन सोनामजागै तै सामुङाव फोनांजागै दङ बिनि दिनै थैजामानि साल आसुग जरा खोनालागा हायुंग बादै थांमानि गग्र
1: आव फाइदे सोंताबो तां बिदिअ जों किसा थांलायानो दिनैनि तां बिदिअ मैथु कायमानो दैसों थाइसे थैनि कक सिलायानो मैथु ओंखा पुष्टि गोनां मै गोथों मैथुआव गोबां केमान थगो भिटामिन ए भिटामिन बि भिटामिन सि दा आबनाव गारिब केलसियाम लौहा आकरकबो मान थगो दाल बिदाल जातनि बिसिंग मैथु दङ पानि मैथु मुखी मैथु पंचमुखी मैथु दूध तै उल मैथु वाते एबा तै कलाइ तेतेखे रमै नारगै माननाय आबहाय थाइरगो एबाखे सुख्र स्र आबहाय थाइरगो आबनो कारिब हा सिन्दिल बाय हा केपेक सापुलु जागो मैथु कायखेखे बेलायखेनो हामसुगो मैथु कायनानि सिखांगानो आल वाइनै वाइ थामसो काहाम किसुवायै जकाम रक्सावै हारपे ख्लाइ सुगै नाहारमानि उलनो मैथु गायनानै नांगौ आलसुवाइफोरनो नांमानि जराजै सारक रोनानै नांनाय आबुनि बिसिङ दङ हेक्टर कायसाव मुस्कि नांगौ सिटन इउरिया नांगौ सेर साराबासि टिएसपि नांगौ सेर सारा नैजिबा एमओपि नांगौ सेर साराबाजि जिपसाम नांगौ सेर सुकुसि दसता नांगौ सारसि मैथु गायनायनि बागै हाक सालना नांगो।

0: सेन्टिमिटार दक्सी ते हाकर कठु केबें कुआर उनानी नांगो सेन्टिमिटार दक फांसारा कायनानी बागै हेक्टर कायसाव नांगो थामसिसनी साय मैटनी या फांगो तुमुं जाब्रा बब्रा रग दंहाखै आबो साफ सुथ्राखै मातनी नाय सारा कायमानी जे तरिया साग सेन्टिमिटार नै निसिमी बा तै गोसारै मातनी नाय लेदा ताय माकर होनै यं तंगो आबो बलाय सावै मैटनो देरारो आबोनि बागै तालफिल मा खालायनाय साल दग सिनिसिमी सुकुसि नि बिसिंगनो लति खलैमानो तै साल सारा ब्रै सिनिसिमी सारा दक्सि नि बिसिंगनो मैत्यु बकं खलैमानो तुमनो कताल रायदतै खालायनो दंखाखै मैत्यु हेक्टर कायसाव थामसि टन मानो तै लति मानो सि नै टन आसुजारा मैत्यु कायमानतै थाइजाथानि कक खाना लायखिया
1: आउफारीके ताबुक सैमालायनो साखामक्रायनि गगो मकलनो नायकिनि ख्लायनानि कक साखामक्रायनि गगो दिनि मकलनो काहामखे तन्नानि दैनायजों सालायनो मकलंखा सिनि साखनि नांकुकमानि मानै गायसा मकलक्रिके जों संसारो लांमा खाक्साक्रिहाय आबोनि बागै मकलनि काहाम नायगानि बेलायखेनो ख्लायना नांगौ मकलबो पद्रे पद बेमारङै मानो गाना एबा हाकचाल नुगियां माने आब' चस्मा बाय न अजोंजा लग्न जायख्लायमान हायखेबा मकल आबगोफाखे मकल रावैबो हायखेबा अपारेशन खालायि आब'न हामरैमान फिया आब्रग्न कारै बहायन मकल गोबां मा बेमार ओंगैमान आबंखा मकल जाक्सामानि कन्जेंटिभाइटि मकल जाक्साव आब' नजों मुखसा गंगु होनायनायजों होनलायो फियाबा एलार्जि बायबो मकल जाक्सायमानो ग्लुकुमा ओंगैतै गायसि मुंगैतै गायसा बेमार दङ आब' बायबो मकल जाक्साव आब'नि बागै मकल जाक्साखेनो आब' मुखसांगिया आब'नि बागै दाक्ति दाक्ति मकल जाक्साखांखे जों डक्टरनो फुनुकनानै नांगौ मकल माइग्रेन एबा भाइरास जप्रयमानो मकलनि बेमारनि नुकमारि रगनि बिसिङाव हंखायै मकल स्राय स्रायखे नुगिया जाबसा जाबसाखे नुकमाबाय गदर हामिया मकलनि बागै बादिमुं बादैमानो मकल मुंसासो हाबखाखे एबा दुखु मानखे मकल सावैमानो एलार्जि बायबो मकल सायमानो मकल दनगैमानो मकल बखरक सामा बायबो मकल दनगैमानो एबा सायमानो मकल बेलायखे साखे रुमु रुमु नुखे बखरक साखे हायखेबा गोपाना नायमा हाय ओंखे आब' ग्लुकुरमानि नुकमारि आब'नि मुं एक्यूट एंगल क्लोजार ग्लुकुमा नि हिन्जाखौ अ बेमार बाय डाक्टि मकल नुगियाङै थाङैमानो आब'नि बागै डक्टर बाय नायजाखनानै बेलायखेनो नांगौ मकल मुं सासे गोंखांखे आब'नि बागै मकलनो गाहाम गोरोंखे तनानि हिंखाय जिनि गाहाम गोरों दंसानि जिनि मकलनो जों आहायनो दंफ्रु रग' मकलकनो फ्लिकनानै नांगौ दायो जों स्क्रिन रग बेलायखेनो ताबुंनि जरावथ' नायो कम्पिउटार मबाइल बद्रे फद जों स्क्रिनो नायो आब'नि बागै मकलनो आनायमा जरा रग' किसा मिसा जों रेस्ट रोनानै नांगौ हायखेबा मकलनो फ्लिकै स्राब स्राब किसि सारग मुकुमै रग जों दंनानै नांगौ दै गाहाम लाइट नग रग' फानो बा हाबा नग रग' फानो गाहाम लाइटनि बिसिङाव जों दंनानै नांगौ दै स्क्रिन रग बाय जेमान

0: आसुक जरा जिन खाना के जोला देवर्मा बहरे सपचाग्र सपमुक्ताबो खाने तीन नवदेव नाइकों कक्तमा तीन टूमारी टंगान 33.0 डिग्री सेल्सियस तई चांगमारी 25.6 डिग्री सेल्सियस तई नवर दुहक बागमारी 97% तई खामो 61% तीन इसा मिसा थायो फेरको बदायबाई मानवनी सकलाई जाखा
1: आओ जरा करीखानी बगे संगारनो मा बसलाइसिनै हायनै खरां पांडाओ तिनि आं तंग अजय
0: आं मीना
1: जतननो हामबाय रेडी सिग्नल जतननो

0: All the more important, the fact is that emerging technologies literally hold the potential to shape our lifestyle and future. India and the European Union have developed this trust with each other and now strive to take that into the business and technology domains.
1: केन्द्रीय वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयल भारत यूरोपीय संघयो मुक्त व्यापार संधि निष्पक्ष न्याय संगत संतुलित निरूप्य अवदत यष सन्धि उभय देशयो सर्वेषा क्षेत्राणां कृते परस्पर हितकर भविष्यति। भारतीय निर्वाचन आयोगेन पंजाब कर्नाटक तेलंगाना दिल्ली इत्येतेषु नगरेषु प्रचलितस्य मतदात्री सूच्याः विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रमस्य समय सीमा विस्तारितास्ति। दिल्ली कर्णाटकयोः मतदान केन्द्र स्तरीयाधिकारिभिः प्रतिगृहं गत्वा क्रियमाणं सत्यापन कार्यं यत् अस्य मासस्य नवविंशति दिनांक पर्यन्तं निर्धारितम् आसीत् अधुना आगामी मासस्य अष्टम दिनांक पर्यन्तं प्रवर्तिष्यते। पंजाब तेलंगाना इत्येतयोः तु प्रतिगृहं गत्वा सत्यापन कार्यं आगामी मासस्य तृतीय दिनांक पर्यन्तं एव अनुवर्तिष्यते। विश्वविख्याता पुरी रथयात्रा अद्य ओडिशा राज्यस्य पुरी नगरे भगवतः जगन्नाथस्य तस्य ज्येष्ठ भ्रातुः बलभद्रस्य अनुजायाश्च देव्याः सुभद्रायाः सह आरभ्यते। अस्याम् वार्षिक रथयात्रायां जगन्नाथः भगवान् स्वभ्रात्रा भगिन्या च सह रथेषु समारोह्य भक्तेभ्यः दर्शनं दास्यति। फीफा विश्वचषक फुटबॉल स्पर्धायाः द्वितीय उपांत्य चक्रे अर्जेंटीना दलम अमेरिका देशस्य अटलांटा क्रीडांगणे इंग्लैंड दलम 2-1 इत्यंकांतरालेन पराजित्य निर्णायक चक्रे प्रवेशम अकरोत्। जुलाई मासस्य 29 दिनांके निर्णायक चक्रे अर्जेंटीना दलम स्पेन दलम सम्मुखी करिष्यति। भारत इंग्लैंड देशयोः मध्ये त्रिदिवसीय एकदिवसीय श्रृंखलायाः द्वितीया स्पर्धा अद्य कार्डिफ नगरस्य सोफिया गार्डन्स क्रीडांगणे भविष्यति इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में सेमीकंडक्टर की डिजाइन और विनिर्माण के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में कल मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सेमीकॉन मिशन के दूसरे चरण के अंतर्गत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है।
3: सेमीकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स हैं। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
2: मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को भी स्वीकृति दी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू हो गया है। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो गया। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी भारतीय पेशेवरों को सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की क्षमता मजबूत करेगा। भारत और बेल्जियम व्यापार तथा निवेश, हरित ऊर्जा, नवाचार और प्रौद्योगिकी, संपर्क, रक्षा, सुरक्षा, क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों के साथ साथ लोगों में आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग और प्रगाढ़ करने पर सहमत हुए हैं। भारत बेल्जियम रणनीतिक संवाद की बैठक ब्रसेल्स में कल आयोजित की गई। मध्य प्रदेश से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर से संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए पहली सीधी उड़ान को झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय मार्गों के लिए प्रति उड़ान 15 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देगी। उन्होंने कहा कि पहले किराया लगभग 24 से 25 हजार रुपए प्रति सीट था, लेकिन अब ये घटकर 12 से 15 हजार रुपए हो गया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की ये उड़ान सप्ताह में 4 दिन संचालित होगी।

श्री मोहन यादव आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में भारत टेक 2026 सम्मेलन में शामिल होंगे। श्री यादव भारत और विदेशों के प्रमुख वस्त्र निवेशकों और उद्योग प्रमुखों से बातचीत करेंगे। श्री यादव भारत मंडपम में मध्य प्रदेश पेविलियन का भी अवलोकन करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक से भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को मजबूत गति मिलेगी। उन्होंने ब्रसेल्स में तीसरी भारत यूरोपीय संघ व्यापार तथा प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक के बाद ये बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब जाएंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा की जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद की एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जालंधर में 5,770 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली का लाल किला परिसर 15 अगस्त तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने ये आदेश जारी किया है। 15 अगस्त को केवल सरकारी पास धारकों को ही लाल किला परिसर में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। अमरीकी सेना ने ईरान पर फिर हमले शुरू कर दिए हैं। अमरीकी सेना की केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान में कई ठिकानों पर रात भर लगातार हमले किए गए। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की रथ यात्रा आज ओडिशा के पुरी में शुरू हो रही है। यात्रा का समापन श्री गुंडिचा मंदिर में होगा। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अर्जेंटीना ने दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। रविवार को फाइनल में अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: का छक्का तो कैच हो गया।
1: फुटबॉल में क्रिकेट? हाँ, कहा ना,
0: सपने में देखा सपना।

0: पतंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार। चलिए हमेशा की तरह करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत एक सुंदर से विचार से, जिसे हमें भेजा है कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने। लिखते हैं,
2: नजरों में सम्मान और बोलने में मर्यादा किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत डोर होती है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है तहसील हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा जी का।
2: ग्राम ममना, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा।
1: और छत्तीसगढ़ लुकाउपाली छतवन से पुनीत राम सूर्यवंशी, निर्मला सिंह, निहारिका सिंह और पंकज सिंह सूर्यवंशी जी।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे।
1: और डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी।
2: सरगुजा मैनपाट से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिबा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और कुमारी W थापा।
1: आप सबके संदेशों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: जी
1: श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं पुस्तकों के क्रमिक विकास की।
2: कल हमने बात की थी मिस्र की सभ्यता की और जाना था कि कैसे उन्होंने पेपरस को लेखन सामग्री बनाया और लेखन की विधा का विकास किया। आज के एपिसोड में हम खोलेंगे एक और नया और बेहद रोचक अध्याय।
1: तो श्रोताओं, आज हम बात करेंगे भारत की, यानी अपने देश की। तब तक कागज का आविष्कार नहीं हुआ था। हम सभी जानते हैं कि कागज का आविष्कार चीन में हुआ
2: जी।
1: लेकिन आइए अब जानते हैं कि भारत में लोग लिखते कैसे थे।
2: प्राचीन भारत में ज्ञान का संरक्षण मुख्य रूप से मौखिक परंपरा से होता था,
1: यानी वाचिक परंपरा
2: जी। वेदों को गुरुओं ने हजारों वर्षों तक गुरु शिष्य परंपरा में मौखिक रूप से संरक्षित रखा। धीरे धीरे लेखन का प्रचलन बढ़ा।
1: श्रोताओं, भारत में लिखने के लिए भोजपत्रों का इस्तेमाल हुआ। भोजपत्र एक विशेष प्रकार का लेखन पत्र था जो भोज या भूर्ज वृक्षों की छाल से बनाया जाता था। बता दें कि ये वृक्ष हिमालय के ऊंचे क्षेत्रों में, विशेषकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पाया जाता है
2: जी।
1: अब प्रश्न ये उठता है कि भोजपत्रों को लिखने योग्य कैसे बनाया जाता था। तो विमलेश जी, अब आपकी बारी।
2: अजीत जी, भोज या भूर्ज वृक्ष की बाहरी छाल को सावधानी से निकाला जाता था। उन्हें सुखाकर और समतल बनाकर उन पर वनस्पति से बनी स्याही से लिखा जाता था
1: जी। श्रोताओं, भोजपत्रों पर कई प्राचीन पांडुलिपियां लिखी गईं। जब कागज नहीं था तो भोजपत्र ही विद्वानों का नोटबुक था। भोजपत्र पर ऋग्वेद, अथर्ववेद और कश्मीर क्षेत्र में राजतरंगिनी की मूल प्रतियां मिली हैं। अनेकों बौद्ध ग्रंथ भी प्राप्त हुए हैं। कई प्राचीन नाटक भी भोजपत्रों पर लिखे मिलते हैं।
2: तो श्रोताओं, भोज वृक्ष की छाल पर सिर्फ शब्द ही नहीं लिखे गए, उनमें भारत का इतिहास, धर्म, संस्कृत, साहित्य, गणित, ज्योतिष और दर्शन भी सुरक्षित किया गया।
1: और हाँ श्रोताओ, भोज पत्र के अलावा दक्षिण भारत में ताड़ पत्र पर भी लिखा जाता था। इसके अलावा ताम्र पत्र और शिलालेख भी हमें मिलते हैं।
2: लगभग पहली दूसरी शताब्दी में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। मिस्र में स्क्रॉल बनाए जाते थे, पन्नों पर भी लिखा जाता था। लेकिन अब मानव सभ्यता में शुरू हुआ एक और नवाचार
1: जी।
2: लोगों ने पन्नों के किनारों को जोड़कर पुस्तक बनानी शुरू की। अजीत जी, उन पुस्तकों को क्या कहा गया?
1: विमलेश जी, उन पुस्तकों को कोडेक्स कहा गया, जो आधुनिक पुस्तक का पूर्वज है
2: जी।
1: कोडेक्स प्रारूप से बहुत से लाभ हुए।

0: जैसे किसी भी पृष्ठ पर तुरंत पहुंचा जा सकता था, पन्नों के दोनों ओर लिखा जा सकता था
1: और अधिक से अधिक जानकारी एक ही पुस्तक में संग्रहित की जा सकती थी।
0: जी,
1: कोडेक्स का विकास रोमन साम्राज्य में हुआ। आइए जानते हैं कुछ और बातें।
0: मध्य युग में पुस्तकें चर्म पत्रों पर भी लिखी जाती थी। यूरोप के मठों में विशेष कक्ष होते थे जिन्हें स्क्रिप्टोरियम कहा जाता था। यहाँ लोग रात दिन बैठकर मूल पांडुलिपियों की नकल करते थे।
1: जी।
0: लिखने या नकल करने वालों को स्क्राइब्स कहा जाता था।
1: नकल करने वालों को बहुत सावधान रहना होता था। वे धीरे धीरे शब्द ब शब्द कई बार ऊंचे स्वर में पढ़कर और उन्हें दोहरा दोहरा कर लिखते थे, क्योंकि कोई गलती न हो जाए, क्योंकि गलती हो जाने पर लिखे हुए शब्दों को मिटाने की उचित व्यवस्था नहीं थी। उन्हें चाकू से खुरचना पड़ता था जिससे कागज या चर्म पत्रों को नुकसान होता था।
0: जी, तो धीरे धीरे कोडेक्स प्रारूप ने पुस्तकों का रूप धारण किया और इनसे मानव सभ्यता के पठित ज्ञान में और अधिक वृद्धि हुई।
1: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है,
0: कोडेक्स किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: कोडेक्स किसे कहते हैं?
0: आप हमारे प्रश्न का उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भेज सकते हैं।
1: फेसबुक, इंस्टा, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक समाज का अध्ययन के एक पाठ पर आधारित है जिसमें विश्वव्यापी समस्या जलवायु परिवर्तन के बारे में उदाहरणों सहित सविस्तार समझाया गया है और बताया गया है कि इसका निदान किन किन उपायों से हो सकता है।
2: जलवायु परिवर्तन। साथियों नमस्कार, मैं हूं दिनेश। आप सबका स्वागत है हमारी रेडियो गोष्ठी में। आज की गोष्ठी का विषय है धरती करे पुकार। साथियों, इन दिनों सभी संचार माध्यमों में एक विषय छाया हुआ है और वो विषय है जलवायु परिवर्तन। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में दो खास मेहमानों को बुलाया है, डॉक्टर नमिता और डॉक्टर दिवाकर। नमस्कार।
3: नमस्कार।
2: साथियों, जलवायु परिवर्तन एक गंभीर पर्यावरण संकट है जिससे आज सारी दुनिया जूझ रही है। चर्चा की शुरुआत करते हैं डॉक्टर नमिता से। तो नमिता जी, पहला प्रश्न ये है कि जलवायु परिवर्तन है क्या? क्या इसे मौसम का परिवर्तन कहेंगे?
3: सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि मौसम परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन में बहुत अंतर है।
2: जी।
3: मौसम परिवर्तन क्षेत्रीय या स्थानीय होता है, लेकिन जलवायु परिवर्तन बिल्कुल अलग है।
2: जी, लेकिन वो कैसे?
3: जलवायु परिवर्तन को समझने के लिए चलिए सबसे पहले ध्यान देते हैं जलवायु शब्द पर। ये दो शब्दों से बना है, जल और वायु।
2: जी।
3: यानी जलवायु परिवर्तन में जल और वायु की स्थिति में परिवर्तन को मापा जाता है।
2: जी।
3: लेकिन एक बात ध्यान देने की है और वो ये कि जलवायु परिवर्तन वैश्विक है यानी वर्ल्ड वाइड।
2: जी।
3: तभी तो दुनिया के सारे देश जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंतित हैं और विचार विमर्श के लिए एक मंच पर आ रहे हैं।
4: देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस पर एक वैश्विक मंच बनाया है जिसमें दुनिया के लगभग सभी देश शामिल हैं। और जानते हैं इस मंच की स्थापना सन 1992 में हुई थी।
2: जी।
4: वैसे जलवायु परिवर्तन कई कारणों से क्षेत्रीय स्तर का भी हो सकता है, लेकिन सारांश में कहा जा सकता है कि यदि पृथ्वी के मौसम और तापमान में लंबे समय तक बदलाव होता दिखाई दे तो ये जलवायु परिवर्तन है।
2: जी। डॉक्टर दिवाकर, अब मेरा प्रश्न आपसे है।
4: जी।
2: आप हमें बताइए कि जलवायु परिवर्तन के संकेत क्या क्या है, यानी हम कैसे जाने कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है?
4: बहुत अच्छा प्रश्न है दिनेश जी। देखिए, इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जब पृथ्वी का औसत तापमान, बारिश का पैटर्न, मौसम के प्रकार और ऋतुओं का स्वरूप कई वर्षों या दशकों में बदलने लगे
2: जी।
4: और स्थायी हो जाए तो हम इसे जलवायु परिवर्तन कहेंगे।
2: जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि हमारे जमाने में मौसम ऐसा नहीं था, अब बिल्कुल बदल गया है।
4: जी
3: जी, आपने बिल्कुल सही कहा। एक उदाहरण लीजिए, जैसे यदि आज से 20 वर्ष या लंबे समय के बाद ऐसा लगे कि पहले इतनी गर्मी नहीं थी जितनी अब हो गई है, पहले बारिश बहुत होती थी लेकिन अब कम या पहले से बहुत ज्यादा हो गई है।
2: जी।
3: और ये स्थानीय तौर पर ही नहीं लेकिन बहुत बड़े क्षेत्र में या वैश्विक हो गई है।

0: तो ऐसी स्थिति को हम जलवायु परिवर्तन कहेंगे।
1: जी, जैसे कि अनियमित बारिश और बाढ़ का आना, ग्लेशियर्स का पिघलना और इनके कारण समुद्र के जल स्तर का बढ़ना, बहुत अधिक संख्या में तूफानों या चक्रवात का आना और फसल, वन्य जीव और मानव स्वास्थ्य पर इसके दुष्प्रभाव के लक्षणों का दिखाई पड़ना।
2: लेकिन दिवाकर जी, इसके कुछ कारण तो होंगे?
1: बिल्कुल दिनेश जी, कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य कारणों में से एक है ग्रीन हाउस गैसों यानी हरित गृह गैसों का बढ़ना। मैं अपने श्रोताओं को यहाँ पर ये बता दूं कि ग्रीन हाउस गैसें सूरज की रोशनी को तो पृथ्वी पर आने देती हैं, लेकिन पृथ्वी से अंतरिक्ष में जाने वाली गर्मी को रोक लेती हैं।
2: अच्छा
1: जी, और इससे जो है पृथ्वी का तापमान बढ़ता है।
2: डॉक्टर नमिता
0: जी,
2: हमारे विद्यार्थी श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं।
0: इसे भी हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। आपने देखा होगा कि पौधों के लिए गर्मी या तापमान को अंदर ही बनाए रखने के लिए शीशे का घर बनाया जाता है,
1: और इससे होता ये है कि सूर्य की गर्मी पौधों तक तो पहुंच जाती है, लेकिन शीशे के कारण ये गर्मी बाहर नहीं निकल पाती। जहाँ तक ग्रीन हाउस गैसों की बात है तो उनमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ओजोन इत्यादि प्रमुख गैसें हैं। जी, तो इससे होता ये है कि सूर्य की गर्मी पौधों तक तो पहुंच जाती है, लेकिन शीशे के कारण ये गर्मी बाहर नहीं निकल पाती।
0: एक और उदाहरण लीजिए, जैसे धूप में खड़ी कार कितनी गर्म हो जाती है, क्योंकि गर्मी कार के बंद होने से अंदर ही फंस जाती है।
1: जी,
0: ग्रीन हाउस गैसें भी पृथ्वी के लिए ऐसा ही काम करती हैं।
2: अच्छा,
0: और फिर होता ये है कि हिमखंड पिघलते हैं, बाढ़ तूफान बढ़ जाते हैं, इससे जलवायु परिवर्तन तेजी से होने लगता है।
2: बहुत सुंदर उदाहरण दिया। तो आप बात करते हैं जलवायु परिवर्तन होता क्यों है।
1: देखिए दिनेश जी, सबसे बड़े कारणों में से एक है जंगलों की कटाई, और कटाई की तुलना में पेड़ कम लगाना। वैसे नमिता जी, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे?
0: जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। हम सब जानते हैं कि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं। अब यदि पेड़ ही नहीं होंगे तो जाहिर है कि पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी।
2: बिल्कुल,
0: और इससे पृथ्वी का तापमान भी बढ़ेगा।
1: जी,
0: और तापमान बढ़ेगा तो ग्लेशियर भी पिघलेंगे, और इससे बाढ़ तो आएगी ही।
2: बिल्कुल,
0: समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा।
1: एक और जरूरी बात यहाँ मैं बताना चाहूँगा।
2: जी,
1: शोध बताते हैं कि पिछली शताब्दियों में प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण जलवायु परिवर्तन हुए, लेकिन बहुत कम।
2: जी,
1: लेकिन 19वीं शताब्दी के बाद से जलवायु परिवर्तन मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों जैसे जीवाश्म ईंधन यानी कोयला इत्यादि को जलाने, वनों की कटाई करने, वाहनों और उद्योगों के बढ़ने के कारण बहुत अधिक हुआ, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग यानी पृथ्वी का तापमान बढ़ा।
2: जी, इन दिनों अक्सर कहा जाता है कि कोयला, पेट्रोल और ईंधनों का बहुत ज्यादा उपयोग ना करें। क्या वाहन, कारखाने और मशीनें भी ग्रीन हाउस गैसें छोड़ती हैं?
0: जी बिल्कुल, वाहनों, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, कारखानों और भारी मशीनों से भी बहुत अधिक मात्रा में ग्रीन हाउस गैस निकलती हैं। इसलिए ये सलाह दी जाती है कि इनका उपयोग आप संतुलित तरीके से करें।
2: जी, तो आइए अंत में जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन को रोका कैसे जा सकता है।
1: देखिए दिनेश जी, पहली बात है पेड़ लगाना और जंगलों को बचाना।
0: बिल्कुल,
1: और यदि पेड़ काटे भी जाएं तो काटने की तुलना में और अधिक पेड़ लगाए जाएं।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने। और दूसरी बात ये है कि हम वाहनों और कारखानों के लिए सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा का उपयोग करें।
1: जी,
0: और जहाँ तक संभव हो अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों का ही उपयोग करें।
2: बिल्कुल, तो आइए अब जानते हैं कि आज हम कहाँ खड़े हैं।
0: साथियों, समाचारों में आप अक्सर बाढ़, तूफानों, भूकंप इन सब बातों की चर्चा सुनते रहते हैं। इसका कारण बहुत हद तक जलवायु परिवर्तन ही तो है।
1: जी
2: बिल्कुल,
1: और दिनेश जी यहाँ पर मैं आपके श्रोताओं से एक विशेष बात साझा करना चाहूँगा।
2: जी,
1: क्या आपको पता है कि भारत के अनेक क्षेत्रों में तापमान की वृद्धि स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है? भाई अब तो ठंडे कहे जाने वाले पहाड़ी इलाकों का भी तापमान बढ़ गया है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। अब उदाहरण के लिए 2025 के बाद से हमारे देश का औसत तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा है।
1: जी,
0: जिसके कारण सर्दी सामान्य से बहुत कम थी और गर्मी

0: अमाने से ज्यादा।
1: ये तो बड़ी गंभीर बात है और ऐसा दुनिया के सभी देशों में हो रहा है। अभी समय है इस पर गंभीरता से विचार करने का और उस पर अमल करने का।
2: जी,
1: कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। डॉक्टर नमिता और डॉक्टर दिवाकर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम शिक्षक कुछ नए आयाम।
5: इस कार्यक्रम में एक आदर्श शिक्षक की भूमिकाओं की चर्चा की गई है और कतिपय शिक्षण प्रविधियों के बारे में बताया गया है जिनके द्वारा शिक्षक बच्चों को नवाचारी विधियों के प्रयोग से बच्चों को और अधिक बेहतर ढंग से पढ़ा सकते हैं।

0: अक्सर अध्यापक ये प्रश्न पूछते हैं कि शिक्षा में मूल परिवर्तन क्या हो रहे हैं, वही विद्यालय हैं, वही शिक्षक हैं, वही पुस्तकें हैं, वही विषय हैं, वही सब कुछ है, लेकिन इन समानताओं में भी कहीं कुछ भिन्नताएं दिखाई पड़ती हैं। आइए हम इसी संदर्भ में दो कक्षाओं का अवलोकन करें।
1: अपने से किताबें निकालो, चलो चलो अपना अपना पार्ट निकालो।
2: जी
1: तुम्हें भी कह रहा हूँ, चलो शाबाश। हाँ गोपाल, इसको बोलो। हाँ इधर मेरी तरफ देखिए। हाँ शाबाश, अब मैं जो बोलूंगा मेरे पीछे पीछे दोहराना।
2: जी गुरुजी,
1: समझ गए?
2: जी।
1: अच्छा शुरू करते हैं।

0: गुरुजी,
1: हाँ?
0: पानी का उपयोग घर के अलावा बाहर भी तो करते हैं, फिर किताब में केवल घर ही क्यों लिखा है?
1: तुमको कई बार कहा है कि जो किताब में लिखा है उसको पढ़ो और बीच बीच में मत बोलो।
0: जी
1: गोपाल
2: जी।
1: बेटा आगे तुम पढ़ाओ।
2: जी गुरुजी। पानी
3: पानी,
2: कुओं
3: कुओं,
2: नदियों
3: नदियों,
2: तालाबों
3: तालाबों
2: एवं झरनों से मिलता है,
3: एवं झरनों से मिलता है।
0: गुरुजी, झरना क्या होता है? मुझे तो बहुत सारे शब्द समझ में ही नहीं आते।
1: फिर बीच में बोले, आगे पढ़ो, चलो चलो शाबाश।
2: गंदे पानी के प्रयोग से अनेक बीमारियां हो जाती हैं।
0: गुरुजी,
1: हाँ बोलो।
0: पानी गंदा कैसे हो जाता है?
1: बीच बीच में ना बोलो, तुम अपना अपना पाठ पढ़ो। चलो
2: जी,
1: चलो
2: जी,
1: ठीक से बैठो, पीछे हो जाओ।
4: आइए अब हम एक और कक्षा में चलें।
5: नमस्ते नमस्ते बच्चों, नमस्ते। अच्छा बच्चों, हम आज इस विषय पर चर्चा करेंगे कि पानी के कौन कौन से साधन हैं, ठीक?
2: जी।
5: अच्छा तो बच्चों बताओ, पानी कहाँ कहाँ से मिलता है?
6: हमारे गांव में दो कुएं हैं,
5: हाँ।
6: एक तालाब भी है।
5: अच्छा
2: मास्टर जी, हमारे मामा के गांव में नदी बहती है, नदी उसी से पानी लाते हैं।
5: शाबाश, बिल्कुल ठीक।
0: मास्टर जी, वर्षा से तो पानी पानी हो जाता है।
5: हाँ हाँ, ये भी ठीक है।
7: मास्टर जी, हमारे घर में तो नल है।
5: शाबाश। अरे बच्चों, तुम तो बहुत कुछ जानते हो। इन साधनों के अलावा पानी और भी कई स्रोतों से मिलता है, जैसे

0: झरने, झील, तालाब, बावड़ी आदि।
1: मास्टर जी।
0: हाँ हाँ बोलो।
1: क्या हम सागर और बादलों को भी पानी का स्रोत मानेंगे?
0: हाँ हाँ क्यों नहीं। अच्छा आप सब बच्चे ये लिखें कि पानी का प्रयोग किन किन कामों में करते हैं, ठीक?
1: जी मास्टर।
0: लिखो फिर, सब लिखो।
2: सुना आपने दोनों कक्षाओं के अंतर को? पहली में भय का वातावरण था और दूसरी में आश्चर्य, खोज, जिज्ञासा और आनंद का। आज के परिपेक्ष में अध्यापक की यही भूमिका उभर कर आई है। इस भूमिका में बच्चों को सहज समझने और सीखने के अवसर मिलते हैं। शिक्षण के ऐसे अवसरों को अब श्रीमती श्याम की कक्षा में देखें, जिन्होंने अंग्रेजी सीखना बच्चों के लिए एक खेल बना दिया है।
3: दीदी।
4: बोलो मालती।
3: दीदी मुझे तो बहुत सारे शब्दों के अर्थ समझ में ही नहीं आते।
4: तुम शब्दकोश में अर्थ ढूंढो और उसके अभिप्राय को समझो।
3: हाँ दीदी। अब मैं एक कॉपी में सारे मुश्किल शब्द लिख लूंगी।
4: ठीक।
3: फिर उनके अर्थ भी शब्दकोश में से देखकर लिख लूंगी।
4: हाँ फिर तो तुम पाठ को सीखने के प्रयास में उन शब्दों का अभिप्राय भी समझ सकोगी।
3: जी।
4: इसके बाद तो तुम्हारे पास अपना ही एक अच्छा खासा शब्दकोश तैयार हो जाएगा।
3: वाह, एकदम मेरा अपना शब्दकोश।
4: हाँ।
2: अब जिस शब्द पर अटको शब्दकोश देखो और समझो। शब्दकोश सिर्फ बच्चे ही नहीं देखते, शकुंतला श्याम भी देखती हैं। शकुंतला जी की यह शैक्षिक विधि थी जो छात्रों के स्तर को सहजता से ऊपर उठाने में काफी हद तक कामयाब थी। उनकी एक और शैक्षिक विशेषता थी, वो शिक्षण में एक मूलभूत सिद्धांत का प्रयोग करती थी। वो सिद्धांत था सीखने के प्रक्रम में छात्रों की सक्रिय भागीदारी। वो अपनी कक्षा को एक खोज यात्रा में बदल देने में माहिर थी। एक अन्य अध्यापिका श्रीमती इंदु बहुत छोटे बच्चों को पढ़ाती हैं। उनके पढ़ाने का ढंग बहुत रोचक है। इंदु जी का पाठ हमेशा संवाद से शुरू होता है, यानी इंदु जी और बच्चों की बातचीत से। ये है इंदु जी के दिन की शुरुआत।
5: नमस्ते दीदी।
6: नमस्ते। नमस्ते बच्चों। नमस्ते
7: दीदी। ये
6: अरे वाह, कितने सुंदर फूल हैं ये। प्रवीण, कहाँ से लाए तुम ये फूल?
8: दीदी ये फूल प्रवीण अपने बगीचे से लाया है।
6: अच्छा
8: दीदी, इसके घर में बहुत सारे फूल लगे हैं।
6: सच? प्रवीण इन फूलों के क्या क्या नाम है बताओ तो जरा।
7: गुलाब।
6: गुलाब, बिल्कुल ठीक। अच्छा प्रवीण, और कौन कौन से फूल लगे हैं तुम्हारे यहाँ?
5: दीदी मैं बताऊँ?
6: नहीं नहीं नहीं, सिर्फ प्रवीण बताएगा। हाँ प्रवीण बताओ।
7: गुलाब।
6: हम्म।
7: गेंदा।
6: हाँ।
7: चमेली। और
6: हाँ
7: चमेली।
6: चमेली।
7: सूरजमुखी।
6: सूरजमुखी, शाबाश।
2: तो आइए इंदु जी से ही सुने उनके पाठ तैयार करने का ढंग। हाँ तेंदु जी, आप जरा बताइए कि पाठ कैसे तैयार करती हैं?
6: देखिए मैं बच्चों के अनुभव को ही पाठ का आधार मानती हूँ। मेरे छात्र पहली, दूसरी और तीसरी कक्षाओं में पढ़ते हैं। इनमें से कुछ बच्चे जैसे प्रवीण बहुत शर्मीले हैं, और मैं पूरा प्रयास करती हूँ कि प्रवीण को खास तौर पर कक्षा से जोड़ा जाए। आपने सुना ना अभी कि मैंने प्रवीण से ही फूलों के नाम पूछे। उसके बाद बात चली पौधों के हिस्सों के बारे में। स्कूल के आंगन में जाकर हमने देखा कि पौधे के कौन कौन से हिस्से होते हैं। अब सब बच्चे जानते हैं कि पौधों में जड़, तना, टहनी, पत्ते, फूल और फल होते हैं।
2: जी जी।
6: आप जानते हैं हमारी प्रयोगशाला है हमारे स्कूल के आसपास का क्षेत्र।
2: स्कूल के आसपास का क्षेत्र?
6: जी, कभी कभी हम सब घूमने निकलते हैं।

0: मैं बच्चों को दलों में बांट देती हूँ। एक दल रास्ते में दिखे पौधों के नाम लिखता है, एक दल पत्तियों के नमूने जमा करता है, और सबसे छोटे बच्चे रास्ते में दिखे पक्षियों को गिनते हैं।
1: बहुत अच्छे।
0: इस तरह सभी बच्चे कुछ ना कुछ करते हैं। लौटकर हम बच्चों से बात करते हैं कि किस मौसम में कौन से पौधे होते हैं और कौन से पक्षी दिखाई देते हैं। इस तरह एक दिन में बच्चों ने पौधों और पक्षियों के बारे में जानकारी प्राप्त की।
1: अरे इंदु जी, आपने तो गणित, वनस्पति शास्त्र और मौसम चक्र सब एक साथ सिखा दिया बच्चों को।
0: और मैंने भी तो सीखा इनसे
1: जी।
0: आपको मालूम है एक पक्षी है जिसके अंडे बहुत ही खूबसूरत हल्के नीले रंग के होते हैं।
1: हल्के नीले रंग के?
0: हाँ, मुझे ये बच्चों ने दिखाया।
1: अच्छा,
0: मैं जिस इलाके की हूँ ना, वहाँ ये पक्षी नहीं होता। और अब बच्चे एक लिस्ट बना रहे हैं।
1: काहे की लिस्ट?
0: कि किस महीने में कौन से पक्षी दिखते हैं, इसकी। छोटे बच्चे पक्षियों के पंख जमा कर रहे हैं और बड़े बच्चे बताते हैं कि वो किस पक्षी का पंख है। बस इस तरह से एक एल्बम बन रही है।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है।
0: हाँ, कभी कभी बच्चे पक्षियों के बारे में कहानियां भी सुनाते हैं।
1: इंदु जी, आपका बहुत ही अच्छा ढंग है यूं खेल खेल में पढ़ाने का।
0: देखिए, बच्चों की पसंद अगर मालूम हो ना
1: जी,
0: तो बच्चों को खेल खेल में बहुत कुछ शिक्षा दी जा सकती है।
1: ये तो आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। दोस्तों, इंदु जी की कक्षा के बच्चे इन पाठों को शायद ही भूलेंगे। खुद करके सीखी चीजें हमेशा याद रहती हैं। शिक्षा का ये सहज आनंदपूर्ण ढंग बच्चों में सीखने की प्रवृत्ति को सहारा देता है। अपने पाठों को जितना हो सके प्रयोगात्मक बनाएं। एक बात का ध्यान हमेशा ध्यान में रहे, बच्चों को उनके आयु वर्ग के अनुरूप ही काम सौंपें और इस काम को चुनौतीपूर्ण बनाएं। 6 से 8 साल तक के बच्चों के लिए अलग अलग पौधों की पत्तियों के आकार और फूलों के रंग ठीक ठीक बता पाना चुनौती भरा है, तो 8 से 10 साल तक के बच्चों की रुचि शायद पक्षियों के घोंसलों के नमूने जमा करने में और कौन से पक्षी कहां घोंसला बनाते हैं ये जानने में होगी। किसी चुनौती को पूरा करना बच्चे के आत्मसम्मान को बहुत पुष्ट बनाता है। एक काम सफलतापूर्वक करने पर बच्चे में अगले उससे और जटिल काम करने का आत्मविश्वास पैदा होता है। अच्छे और सफल अध्यापक इस गुण को हमेशा इस्तेमाल करते पाए गए हैं। अगर आपने गौर किया हो तो पता लगेगा कि ये लोग बच्चों को अपने सवालों के जवाब खुद ढूंढने में मदद करते हैं। वो बच्चों के अनुभवों को पाठ का आधार बनाते हैं और बच्चों की सक्रिय भागीदारी पाठ में बनाए रखते हैं। वो बच्चों को खुद करके सीखने और अपने अनुभव को बताने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और यही है अच्छी शिक्षा विधि का गुण।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शिक्षक कुछ नए आयाम। आशा है श्रोताओं आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। तो अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अजीत को
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
0: जगबंधु,
1: चेतना और

खापांग बेसर तुई सैबो लाइथांग अकोक थेयो प्रमिला देव बर्मा खरेंगो सक्रंग पांडा बड़े चापुंग खनर जाखा सक्रंग पांडा ताबुक बिनिगा गुल खना बैदी विद्या जमाते ने खरंग चापुंग बिनी रो चापुंग कोक थे वाइस हनंग बाई बिनी और चापुंग खनाता जगह कब खने रखा जॉन जमातिया मैथ्यू जमातिया ताई मार्क जमातिया श्रीहर का बुरबुरिया अमरपुरनी

0: আকাশবাণী আগরতলা, এখন শুনবেন দিল্লি কেন্দ্র থেকে প্রচারিত সংবাদ।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে কনকলতা। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान सहित आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों के बीच घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की पांचवी बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि बिम्स्टेक सदस्य देशों के लिए सहयोग करना, पारस्परिक लाभ के लिए निर्णायक कदम उठाना और आपसी चर्चाओं के माध्यम से समाधान खोजना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सदस्य देशों ने आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, साइबर खतरों और समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में सहयोग को आगे बढ़ाया है।
2: बिम्स्टेक्स लॉन्ग स्टैंडिंग गोल्स,
3: क्षेत्रीय सुरक्षा, संपर्क, निर्माण क्षेत्र और आर्थिक सुरक्षा को बढ़ाने में बिम्स्टेक के सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाते रहना चाहिए।

0: भारत के लिए बिम्स्टेक पड़ोस प्रथम के हमारे दृष्टिकोण और महासागर के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो पूरे क्षेत्र में सुरक्षा और विकास के लिए प्रगति का प्रतीक है।
1: होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन।
2: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार का प्रयास एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां सीमाएं न केवल सुरक्षित हों बल्कि अच्छी तरह से जुड़ी हुई भी हों। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा एक ही दिशा में आगे बढ़ें। नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन तकनीकी संगोष्ठी में श्री सिंह ने कहा कि उन्नत अवसंरचना हमेशा से विकसित सभ्यता की पहचान रही है। रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि किसी भी दूरस्थ क्षेत्र में रहने वाला कोई भी नागरिक मुख्य धारा से कटा हुआ महसूस न करे। प्रवर्तन निदेशालय ने आतंकी गतिविधियों के लिए कथित रूप से धन उपलब्ध कराने और अवैध घुसपैठ नेटवर्क के सिलसिले में आज 13 परिसरों पर छापेमारी की। ये मामला उत्तर प्रदेश आतंकरोधी दस्ते द्वारा दर्ज की गई FIR से संबंधित है। इसमें एक संगठित गिरोह पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने, जाली भारतीय पहचान पत्र बनवाने और देश के विभिन्न हिस्सों में उनके पुनर्वास में सहायता करने का आरोप है। जांच में एक व्यापक वित्तीय नेटवर्क का पता चला है जिसमें कुछ धर्मार्थ ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाएंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में दोपहर में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क के बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। सरकार ने ईंधन निर्यात की पाक्षिक समीक्षा में पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन ATF के निर्यात पर लगने वाले विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क में बदलाव किया है। डीजल के निर्यात पर कर बढ़ाकर अब 15.50 रुपए प्रति लीटर और विमानन ईंधन पर निर्यात कर बढ़ाकर 14.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं पेट्रोल के निर्यात पर कर घटाकर 2.50 रुपए प्रति लीटर किया गया है। ये बदलाव आज से लागू हो गए हैं। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरों मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर लगातार किए गए जोरदार धमाकों के बाद तेहरान में वायु रक्षा प्रणालियों को नुकसान पहुंचाया गया। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन और कुवैत समेत इस इलाके में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बेल्जियम के ब्रसल्स में भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग महासंघ, भारतीय उद्योग परिसंघ SOCHM और अन्य क्षेत्रीय संघ के सदस्यों वाले भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि इस दौरान भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से भारतीय उद्योग के लिए सृजित होने वाले नए अवसरों पर चर्चा की गई। पीवी सिंधु जापान ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने विश्व की 5वें नंबर की खिलाड़ी चीन की हान यू को लगातार सेटों में हराकर सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज शाम 5:30 बजे कार्डिफ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: আকাশবাণী আগরতলা শুরু হচ্ছে অনুষ্ঠান মহিলা মহল।
4: নমস্কার শ্রোতা বন্ধুরা, স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের সবাইকে আজকের মহিলা মহলের আসরে। প্রতি সপ্তাহেই কোনো না কোনো অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক তথা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়েই কিন্তু আমরা আলোচনা করে থাকি এই আসরে। আজও ঠিক এমনই একটা বিষয় অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক, যেটা আমাদের সমাজে অহরহ ঘটে চলেছে, বিবাহ বিচ্ছেদের মতো একটি ঘটনা। আর সেটা কিন্তু প্রতিদিনকার একটা চালচিত্র আমরা বলতেই পারি, কিন্তু একটা সময় ছিল যখন স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যে বন্ধন সেটাকে একেবারে জন্ম জন্মান্তরের বন্ধন হিসেবে বিবেচনা করা হতো এবং প্রচণ্ড টানা পড়েন অর্থনৈতিক কষ্ট দুঃখের মধ্যেও কিন্তু সেই বন্ধনটাকে টিকিয়ে রাখার একটা চেষ্টা তো চলতো। বিবাহ বিচ্ছেদের মতো ঘটনা কিন্তু মানে কদাচিতই চোখে পড়তো। তো বর্তমান সময়ে কি এমন বিষয়

0: डोभाल ने कहा कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान के कारण सभी देशों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बिम्स्टेक सदस्य देशों के लिए सहयोग करना, पारस्परिक लाभ के लिए निर्णायक कदम उठाना और आपसी चर्चाओं के माध्यम से समाधान खोजना अत्यंत आवश्यक है।
1: बिम्स्टेक लॉन्ग स्टैंडिंग गोल्स
2: क्षेत्रीय सुरक्षा, संपर्क, निर्माण क्षेत्र और आर्थिक सुरक्षा को बढ़ाने में बिम्स्टेक के सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। भारत के लिए बिम्स्टेक पड़ोस प्रथम के हमारे दृष्टिकोण और महासागर के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो पूरे क्षेत्र में सुरक्षा और विकास के लिए प्रगति का प्रतीक है।
1: होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन।
0: श्री डोभाल ने कहा कि बिम्स्टेक हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को एक साथ लाता है, जिनकी संयुक्त जीडीपी लगभग 50 खरब अमेरिकी डॉलर है।
1: There is an urgent need for us.
2: हमारे लिए जरूरी है कि हम मिलकर काम करें, आपसी फायदे के लिए एक ठोस कदम उठाएं और उन बड़ी समस्याओं का समाधान आपसी बातचीत और विचार विमर्श से निकालें जिनका हम सभी सामना कर रहे हैं। बिम्स्टेक हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण और जीवंत क्षेत्रों को एक मंच पर लाता है। यहाँ 1.7 अरब लोग रहते हैं, जो दुनिया की आबादी का लगभग 22% है।
0: श्री डोभाल ने कहा कि सदस्य देशों ने आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, साइबर खतरों और समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में सहयोग को आगे बढ़ाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार का प्रयास एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां सीमाएं न केवल सुरक्षित हों बल्कि अच्छी तरह से जुड़ी हुई भी हों। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा एक ही दिशा में आगे बढ़ें। नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन तकनीकी संगोष्ठी में श्री सिंह ने कहा कि उन्नत अवसंरचना हमेशा से विकसित सभ्यता की पहचान रही है।
3: हम यह समझते हैं कि जिस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा उसी देश का फ्यूचर भी सबसे अधिक मजबूत होगा। पिछले 10-12 वर्षों में हमने गांव-गांव, शहर-शहर, पहाड़, पर्वत, नदी सबको आपस में जोड़ने का एक मिशन चलाया और यह जुड़ाव केवल रोड ट्रांसपोर्ट तक सीमित नहीं रहा। हमने सड़क से, रेल से, हवाई मार्ग से और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से सबको जोड़ने यानी हर प्रकार की कनेक्टिविटी प्रदान करने पर विशेष बल दिया है। हमने इंश्योर किया दूर दराज के किसी भी क्षेत्र में रहने वाला कोई भी नागरिक मेन स्ट्रीम से कटा हुआ महसूस न करे। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमने कनेक्टिविटी को सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट का एक अनिवार्य अंग माना।
0: श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रोहतांग में अटल सुरंग, उमलिंगला में विश्व की सबसे ऊंची वाहनों की सुरक्षित आवाजाही योग्य सड़क और लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर निर्मित सेला सुरंग जैसी ऐतिहासिक परियोजनाएं बीआरओ की क्षमताओं का जीवंत प्रमाण है।
3: शक्ति चाहे कितनी भी हो, चाहे कितनी भी एडवांस क्यों न हो, उसे खड़े होने के लिए एक ठोस जमीन चाहिए ही। और बीआरओ हमारे सीमावर्ती और कठिन क्षेत्रों में एयरफील्ड्स भी बनाता है, यानी टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी बदल जाए, हम चाहे जमीन से आकाश तक और आकाश से समुद्र तक कितनी भी प्रोग्रेस कर लें, पोर्ट्स, एयरफील्ड्स, रोड्स और टनल्स, इनकी भूमिका कतई कम नहीं होने वाली है। वारफेयर का स्वरूप जितना भी बदल जाए, इस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व यह हमेशा बना ही रहेगा। और इसका सीधा अर्थ यह है कि बीआरओ के कामों का रिलेवेंस भी आने वाले युग में लंबे समय तक बना रहने वाला है।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने आतंकी गतिविधियों के लिए कथित रूप से धन उपलब्ध कराने और अवैध घुसपैठ नेटवर्क के सिलसिले में आज 13 परिसरों पर छापेमारी की। ये मामला उत्तर प्रदेश आतंकरोधी दस्ते द्वारा दर्ज की गई FIR से संबंधित है। इसमें एक संगठित गिरोह पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने, जाली भारतीय पहचान पत्र बनवाने और देश के विभिन्न हिस्सों में उनके पुनर्वास में सहायता करने का आरोप है। जांच में एक व्यापक वित्तीय नेटवर्क का पता चला है जिसमें कुछ धर्मा ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने CBSE पाठ्यक्रम के तहत 9वीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई और कहा कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे 5वीं या 6ठी कक्षा में शुरू किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सकें। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि वे 9वीं कक्षा से तीसरी भाषा शुरू न करें। ये टिप्पणी मद्रास उच्च न्यायालय के विरुद्ध दायर तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई। मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य के हर जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने की बात कही थी। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित

0: प्रदेशों को वृद्ध या असाध्य रोग से ग्रसित कैदियों की शीघ्र या समय से पहले रिहाई के लिए व्यापक नीति बनाने और लागू करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने देश भर में ऐसे मामलों पर विचार के लिए एक समान तंत्र सुनिश्चित करने के संबंध में नीति को 3 महीने के भीतर अधिसूचित करने का आदेश दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज अधिकारियों को कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य की दैनिक निगरानी करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि जीवन अनमोल है। श्री वांगचुक नई दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन अनमोल है और वांगचुक की नियमित चिकित्सा जांच कराने में कोई आपत्ति नहीं है। भारत में पर्यावरण अनुकूल और सतत रेल आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी की शुरुआत कल से होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर इसे रवाना करेंगे। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच चलेगी और हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से संचालित है, जो हाइड्रोजन को बिजली में परिवर्तित करती है। एक रिपोर्ट।
1: देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू होने से रेलवे अब स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल सफर की ओर एक नई शुरुआत कर रहा है। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है, जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। इस ट्रेन में 10 डिब्बे हैं, जिससे यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। यह ट्रेन जींद सोनीपत रेल खंड पर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। ग्रीन हाइड्रोजन के इस्तेमाल से कोयले जैसे जीवाश्म ईंधन से बनने वाली बिजली पर निर्भरता कम होगी। इसके अलावा पर्यावरण की रक्षा होगी और देश को स्वच्छ परिवहन की दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। इस ट्रेन के शुरू होने के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका की सूची में शामिल हो जाएगा, जो रेलवे में साफ और हरित तकनीक के लिए हाइड्रोजन का उपयोग कर रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ भी करेंगे। प्रधानमंत्री कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के दौरे पर रहेंगे। वे चंडीगढ़ में दोपहर में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क के बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। कांग्रेस संसदीय दल सीपीपी की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और पार्टी के अन्य सदस्य उपस्थित थे। बैठक के बाद कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने बताया कि बैठक में आगामी मानसून सत्र में उठाए जाने वाले प्रमुख मुद्दों पर पार्टी के रुख पर चर्चा हुई। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सतत कृषि विकास सुनिश्चित करने के लिए किसानों के बीच एकीकृत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि किसानों और वैज्ञानिकों के सामूहिक परिश्रम से असाधारण परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अनुसंधान से किसानों को वास्तविक समय में लाभ मिलना चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि देश ने 376 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया है।
2: एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलेंट है, 29 बायोफोर्टिफाइड है, ये विकसित की है। बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अलनीनो के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजना बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूं ICAR कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि एक समृद्ध जैव अर्थव्यवस्था देश की स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करेगी, वैक्सीन विकास को बढ़ावा देगी, उच्च कुशल रोजगार पैदा करेगी और वोकल फॉर लोकल पहल को आगे बढ़ाएगी। नई दिल्ली में 2035 तक भारत को एक अग्रणी जैव अर्थव्यवस्था महाशक्ति के रूप में बनाना शीर्षक वाली कार्ययोजना को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि 21वीं सदी जैव प्रौद्योगिकी की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के लिए आज विस्तृत अनुष्ठान और अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सुबह से ही पुरी में हो रही मूसलाधार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डांडा पर पवित्र अनुष्ठानों के साक्षी

0: बन रहे हैं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मौसी के घर श्री गुंडिचा मंदिर की ओर तीनों रथों को खींचे जाने से पहले गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव द्वारा औपचारिक छेरा पहरा रथों की सफाई की रस्म की जाएगी। उत्सव के सुचारू संचालन के लिए व्यापक सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अंग्रेजी दैनिक में लिखे गए लेख को सोशल मीडिया पर साझा किया। एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये लेख भगवान जगन्नाथ के प्रति राष्ट्रपति की आजीवन भक्ति को दर्शाता है, जिसमें उनके बचपन की प्यारी यादों से लेकर उनके जीवन को आकार देने वाले गहन आध्यात्मिक अनुभवों की यात्रा का वर्णन किया गया है। सरकार ने ईंधन निर्यात की पाक्षिक समीक्षा में पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन ATF के निर्यात पर लगने वाले विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क में बदलाव किया है। डीजल के निर्यात पर कर बढ़ाकर अब 15.50 रुपये प्रति लीटर और विमानन ईंधन पर निर्यात पर कर बढ़ाकर 14.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं पेट्रोल के निर्यात पर कर घटाकर 2.50 रुपये प्रति लीटर किया गया है। ये बदलाव आज से लागू हो गए हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक आज के सत्र में 0.4% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 29 अंक बढ़कर 77,214 पर और निफ्टी 18 अंक बढ़कर 24,060 पर पहुंच गया। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
1: पीवी सिंधु जापान ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने विश्व की पांचवें नंबर की खिलाड़ी चीन की हान यू को मात्र 35 मिनट में लगातार सेटों में हराकर सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। हालांकि प्री क्वार्टर फाइनल में तनिषा क्रास्टो और ध्रुव कपिला की मिक्स्ड डबल्स जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज शाम भारतीय समय के अनुसार 5:30 बजे कार्डिफ में खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने बर्मिंघम में पहले एक दिवसीय मैच में मेजबान इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया था। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मुकाबला रविवार को लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर खेला जाएगा। वहीं फुटबॉल में फीफा विश्व कप में अर्जेंटीना ने फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। अब फाइनल मुकाबले में रविवार को अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने भू राजनीतिक संघर्षों के बीच सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों में घनिष्ठ सहयोग का आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा में प्रगति एक दिशा में आगे बढ़े। सर्वोच्च न्यायालय ने CBSE को तीसरी भाषा 5वीं या 6ठी कक्षा से शुरू करने का सुझाव दिया। पर्यावरण अनुकूल और सतत रेल आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन संचालित देश की पहली रेलगाड़ी कल से शुरू। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने विश्व की 5वीं नंबर की खिलाड़ी चीन की हान यू को हराकर जापान ओपन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। और क्रिकेट में भारत तथा इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय मैच आज शाम कार्डिफ में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: আকাশবাণী আগরতলা, এবারে আপনাদের জানিয়ে দেব আবহাওয়ার বিজ্ঞপ্তি। আগরতলা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে যে আজ আকাশ সাধারণত মেঘাচ্ছন্ন এবং কিছু কিছু জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী 24 ঘন্টার সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকতে পারে যথাক্রমে 33 ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং 25.6 ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ সর্বোচ্চ 95% এবং সর্বনিম্ন 65%। পরিমাপযোগ্য বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 25.4 মিলিমিটার। এক সতর্কবার্তায় জানানো হয়েছে রাজ্যের পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা, খোয়াই জেলা, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা, গোমতী জেলা এবং সিপাহীজলা জেলাতে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। শুনলেন আবহাওয়ার বিজ্ঞপ্তি। এবারে আপনাদের জানিয়ে দেব আমাদের আজকের পরবর্তী অনুষ্ঠান সূচি সম্পর্কে। বিকেল 5:10 হিন্দি ছায়াছবির গানের অনুষ্ঠান চিত্রগীতি। বিকেল 5:45 শুনবেন লোকগীতি শিল্পী সাত্তকী। সন্ধ্যে 6:05 শিক্ষার্থীদের জন্য অনুষ্ঠান। সন্ধ্যে 6:30 ঘর গৃহস্থীর আসর। পরে লোকগীতি শুনবেন শিল্পী গোষ্ঠ গোপাল দাস। সন্ধ্যে 7টায় শুনবেন ককবরক অনুষ্ঠান, রাত 8টা বেজে 5 মিনিটে শুনবেন সমীক্ষা।

0: whose date is about 17th century AD, that would trace the maker of the Jagannath temple to be Jajati I. That is the first Jajati. But there is a classic text on Jagannath cult, which is mentioned in the Purushottama Khetra Mahatmya. They would like to credit the making of the mandir to Indradyumna, who's named so because he is a king powerful like Indra, or the king of the gods. He was a Somavamsi ruler and ruler of Avanti. That's why he is taken to be a mythical king, and he is taken to be the chief architect of the temple, though there existed another temple earlier. And this earlier temple, a later day emperor called Galamadava, when he was going on his horse, the hoofs of his horse are supposed to have rubbed against the tip of the temple, and thereafter he knew that the obstacle meant that there was something which was hidden under the ground, and this was excavated, and the mandir came up as it was. So, like I was telling you, this is described this way in Sanskrit: Sarvam Rahasya Purushottamascha Deva Na Janati Kuto Manushya. And the Jagannath, as we see him, carries so many tales with him, which we'll be talking about by and by. With this, I'll request my fellow commentator to continue with commentary in Hindi.
1: Dhanyavad, Professor Rajnikant Nayak ji. Abhi rath khinchne mein kafi samay hai, kyunki rath khinchne se pehle जो शंकराचार्य महाराज की नीति है वो संपन्न हुई है, इसके बाद संपन्न होने को जा रही है. फिलहाल शंकराचार्य महाराज भगवान श्री जगन्नाथ जी के रथ पर विराजमान हैं, वहाँ पूजा आरती कर रहे हैं. थोड़ी देर में वो यहाँ से अपना कार्य संपन्न कर विदाई लेंगे. उसके पश्चात गजपति महाराजा यहाँ आएंगे अपनी सेवा प्रदान करने के लिए. पुरी के गजपति महाराजा भगवान श्री जगन्नाथ जी के प्रथम सेवक माने जाते हैं, इसलिए रथों पर छेरा पहरा की नीति संपन्न करने की जो परंपरा है, इसका जो हक है ये उन्हें प्राप्त है. छेरा पहरा क्या होता है ये मैं आपको बताना चाहूँगा. छेरा और पहरा ये दो शब्दों का मिश्रण है. छेरा यानी चंदन का गाढ़ा घोल, और पहरा यानी झाड़ू से साफ करना. तो छेरा पहरा ये मिलकर झाड़ू से साफ करना और चंदन मिश्रित जल का सिंचन करना, ये होता है छेरा पहरा. तो गजपति महाराजा जब ये आएंगे, बारी बारी से तीनों रथों पर ये सेवाएं प्रदान करेंगे. फिलहाल मैं आपको बता दूं, ये रथों के निर्माण के बारे में कुछ जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा. परंपरा के अनुसार वैशाख शुक्ल तृतीया यानी अक्षय तृतीया रथ निर्माण की शुभ तिथि मानी जाती है. प्रतिवर्ष पुरोहित यज्ञादि अनुष्ठान पूर्वक श्री नर यानी कि भगवान गजपति राजा के जो महल है उसे श्री नर कहा जाता है, उसके सम्मुख रथशाला की स्थापना करते हैं. ये रथशाला स्थानीय भाषा में रथ खड़ा कहा जाता है. इसके उपरांत श्री मंदिर से तीन रथों के लिए तीन आज्ञामाल लाए जाते हैं, और तीनों रथों के निर्माण हेतु रखी गई पहली लकड़ियों को पूजा करके, फिर पूजा अर्चना के बाद प्रति जो रथ के लिए अलग अलग कारीगर हैं वो कुल्हाड़ी चलाकर रथ निर्माण कार्य का शुभारंभ करते हैं. यही प्रक्रिया प्रतिवर्ष होती है, आज भी हो रही है, आगे चलकर भी यही प्रक्रिया जारी रहेगी. जिस प्रकार पंच तत्वों से बने मानव शरीर या मानव रथ निर्माण होता है, उसी प्रकार पाँच तत्वों से बना है, उसी प्रकार रथ के निर्माण में भी पांच तत्वों का उपयोग किया जाता है. लकड़ी, धातु, वस्त्र, जरी और रंग आदि जंबूरा, ये सब प्रयोग में लाया जाता है, जिससे रथ बहुत ही सुंदर और

आकर्षक लगते हैं। इन पांच तत्वों में से दारू यानी लकड़ी ही रथ निर्माण का प्रमुख कारक है। रथों के निर्माण में साधारणतया शाल, असन, भौरा, अर्जुन और फांसी आदि लकड़ियों का प्रमुखता से उपयोग किया जाता है। महाराणा, गुणाकार, छद्माकार वंशानुक्रम से ये रथों का निर्माण कार्य करते आए हैं। जो शास्त्रीय विधि से रथ का निर्माण करते हैं, रथ खला में मुख्यतः लकड़ी का काम होता है, और जबकि अन्य कार्य अलग अलग जगहों पर होते हैं।

0: एक विशेष रूप से बनी पालकी पर विराजमान होकर रथों पर अपनी सेवा प्रदान करने के लिए पहुंचे हैं। वो बारी बारी से तीनों रथों पर सोने की मुठ वाली झाड़ू से रथों की सफाई करेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं, आगे आगे एक सेवक श्वेत फूल वहां डालते जा रहे हैं और झाड़ू से महाराजा उसकी सफाई करते हैं। इसके बाद वो तीनों रथों पर ये सेवा करने के बाद वो सुगंधी जल से, चंदन मिश्रित जल से सिंचन करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे, आरती करेंगे, चामर सेवा करेंगे। ये उनका पारिवारिक हक है। भगवान श्री जगन्नाथ जी के प्रथम सेवक होने के नाते उन्हें यह अधिकार प्राप्त है। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रभु जगन्नाथ श्री बलभद्र और माता सुभद्रा के साथ चक्रराज सुदर्शन और सभी पार्श्व देवी देवता रथों पर विराजमान हो जाने के बाद, शंकराचार्य की नीति समापन होने के बाद गजपति महाराजा आते हैं। अभी अभी वो आए हैं। पहले दाऊ जी बलभद्र जी के रथ पर वो जाएंगे, फिर सुभद्रा जी के रथ पर और अंत में जगन्नाथ जी के रथ पर जाकर वो अपनी सेवा प्रदान करेंगे। इस छेरा पहरा जो विशेष नीति है और जिसका अधिकार गजपति महाराजा को प्राप्त है, ये सदियों पहले गजपति कपिलेंद्र देव के समय से इस परंपरा का प्रारंभ हुआ था। तब से लेकर आज तक वही परंपरा चली आ रही है। पहले मंदिर के अंदर से जहां भगवान रथ पर आने के लिए निकलते हैं, पूरे रास्ते पर छेरा पहरा की नीति होती थी। परंतु एक समय ऐसा आया जब गजपति मुकुंद देव रुग्ण होने के कारण ये परंपरा सीमित कर दी गई और सिर्फ रथों पर छेरा पहरा की नीति का प्रारंभ हुआ और यही नीति आज तक चली आ रही है। फिर भी राजा और प्रजा के बीच के संबंध तथा धर्म के प्रति राज परिवार के समर्पण भाव को दर्शाती ये परंपरा प्रतीक है भक्ति का, प्रतीक है विनम्रता का, प्रतीक है समानता का। जहां अपने पद प्रतिष्ठा के अहंकार को त्याग कर राजा स्वयं सेवक बन जाते हैं, क्योंकि जो जगत के नाथ हैं उनके आगे राजा हो या सामान्य व्यक्ति, सभी एक बराबर होते हैं, सभी उनके सेवक होते हैं। अब आगे का हाल सुनाने के लिए मैं अपने साथी कमेंटेटर प्रोफेसर रजनीकांत नायक जी से अनुरोध करूंगा अंग्रेजी में। जय श्री जगन्नाथ।
1: As I was telling you, brothers and sisters, our Lord Jagannath is a God of Bhava. Bhava means love and bhakti, that is devotion. And as such, the cult of Jagannath attracts a lot of apostles and saints, also mystics, scholars, seekers, and general public to his annual Rath Jatra. They all come here to participate in this annual Rath Jatra, which is supposed to be a journey of an ultimate kind, which leads man, the finite, towards his redemption, the infinite. And in this connection, let me tell you, the apostles who have made this land famous in the past, they include names like Madhava, Ramanuja, Nimbarka, Kabir, Nanak, and of course Sri Chaitanya Deva from West Bengal. And we also come to hear about Saint Ganapati Bhatta on the Snana Purnima occasion, how he had had a dream to come and have a glimpse at Lord Jagannatha, because Lord Ganesha had appeared in his dream and asked him to come to Puri, Sri Khetra Puri, and have a glimpse of Lord Jagannatha on the Snana Bedi. But when he came here, with a lot of unwillingness, of course, because he

0: of Jananas. In Jananas, gods are variously addressed as Krupa Sindhu, that is Ocean of Mercy, Deenabandhu, Friend of the Destitute, Arthatrana, Remover of Pain, or Patita Pavana, Rescuer of the Fallen. Fallen doesn't mean, as I told you, that it's a sinner, but anybody who is interested in redeeming himself or herself can come in the category of Patita. And this element of Oli is absent in bhajans, which occupies a special place and a central place in the Jananas. The famous Janana, one such famous Janana is Ahe Neela Saila, courtesy Salabega, who was a Muslim, but he was a very fond devotee of the Lord. Or there is another Janana by Akshay Mahanti, another popular singer from Odisha, Ekato Bhakata Jivana. These, and there are so many, for the precision of time, I am not able to recapitulate many of them, but preponderance of devotional literature in pre-colonial Odisha, as researcher Manmohan Chakraborty highlights, and later on other historians have also agreed with him on this. And the first famous epithet which was given to a singer of Janana in Odisha was Banikantha. It was conferred on Nimai Charan Harichandan. More about this later. I would like Majithia ji to continue the commentary in Hindi and talk to you about the progress of the Rath Jatra.
1: धन्यवाद प्रोफेसर नायक. जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा, मैं देख पा रहा हूं बलभद्र जी के तालध्वज रथ पर गजपति महाराजा अपनी छेरा पहरा की नीति संपन्न करने में लगे हैं. तालध्वज रथ के अपने सेवा प्रदान करने के बाद, छेरा पहरा करने के बाद, वो देवी सुभद्रा के रथ पर जाएंगे और अंत में जगन्नाथ जी के रथ पर. उसी क्रम में पहले छेरा पहरा होगा, सोने के मुठ वाली झाड़ू से सफाई करेंगे, फिर वो सुगंधित जल का सिंचन करेंगे, उसके बाद आरती करेंगे, चामर सेवा करेंगे, उसके बाद उनकी सेवा संपन्न होगी और फिर से वो पालकी में सवार होकर अपने राजमहल वापस आएंगे. इसमें अभी समय है. मैं आपको बताना चाहूंगा, जो यहां पूरी धाम जो ऐसा है, इसकी महिमा ऐसी है, या जो भी आए वो जगन्नाथ जी में अपने इष्ट का दर्शन कर पाए और अपने आप को धन्य मानने लगे. जैसे कि संत कबीर का जब श्री क्षेत्र पुरी में आगमन हुआ, तो दूर से ही श्री मंदिर की चूड़ा पर, श्री मंदिर के शिखर पर नील चक्र और पतितपावन ध्वज को देखकर भावुक हो उठे. अनायास ही उनके मुख से निकल पड़ा, नील चक्र पर धजा बिराजे, मस्तके सोहे हीरा, ठाकुर आगे दासी नाचे, गाए दास कबीरा. अब आप सोच रहे होंगे, ठाकुर आगे दासी नाचे, इसका क्या अर्थ होता है? जगत के नाथ जगन्नाथ, उनके दरबार में पहले नृत्य हो रहा था, पारंपरिक ओडिसी नृत्य, जो देवदासियां होती थी, जिन्होंने अपना जीवन संपूर्ण रूप से भगवान श्री जगन्नाथ की सेवा में अर्पण कर दिया था, वो नृत्य करती थी. आज के जमाने में वो परंपरा अब रही नहीं, लेकिन कबीर जी ने वो जो दोहा कहा, नील चक्र पर ध्वजा बिराजे, मस्तके सोहे हीरा, ठाकुर आगे दासी नाचे, गाए दास कबीरा. उसी प्रकार श्री जगन्नाथ महाप्रभु को स्वयं भगवान श्री कृष्ण और राधा का युग्म अवतार माना जाता है. 16वीं सदी के महान संत श्री चैतन्य अक्सर जगन्नाथ मंदिर

में कृष्ण के प्रेम में भाव विभोर होकर नाचते थे, गाते थे। रथ यात्रा के समय वह अपने भक्तों के साथ मिलकर गुंडीचा मंदिर, जहां भगवान की रथ यात्रा पूरी होती है, उस मंदिर को साफ करते थे। इससे पता चलता है अहंकार को मिटाने और मन को शुद्ध करने का ये प्रतीक है। जब जगन्नाथ जी स्नान यात्रा के बाद बीमार पड़ते हैं, जिसे अनवसर काल कहा जाता है, वो 15 दिन ऐसे होते हैं अपने भक्तों के लिए बहुत ही पीड़ादायी कहा जाता है, तो चैतन्य महाप्रभु उसी समय पुरी आए हुए थे। उन्होंने जगन्नाथ जी के दर्शन न पाकर विरह के दर्द में पुरी छोड़कर 25 किलोमीटर दूर ब्रह्मगिरी में जा पहुँचे और वहाँ चतुर्भुज विष्णु के रूप में भगवान जगन्नाथ जी ने उन्हें दर्शन दिया और उनके मन को शांत किया। आज भी अनवसर काल में हजारों भक्त ब्रह्मगिरी जाते हैं भगवान जगन्नाथ जी के विष्णु रूप के दर्शन के लिए और वहाँ का प्रसिद्ध खीर का प्रसाद पाकर धन्य होते हैं। जब तुलसीदास जी पुरी आए थे, उन्हें लकड़ी से बनी जगन्नाथ जी के इस अधूरे रूप में अपने इष्ट यानी भगवान श्री राम के दर्शन नहीं हुए, उन्हें भी दुख हुआ, उनके मन को भी ठेस पहुंची। तब भगवान ने उन्हें रात में सपने में दर्शन देकर अपनी महिमा बताई। फिर अगले दिन सुबह मंदिर में तुलसीदास जी को जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के स्थान पर प्रभु श्री राम, श्री लक्ष्मण और माता सीता के भव्य दर्शन हुए। इसके अलावा भगवान राम के एक अन्य भक्त रघुदास को भी जगन्नाथ मंदिर में राम, लक्ष्मण और सीता के दर्शन हुए थे। ऐसी दंत कथाएँ बहुत हैं, हम कहने बैठें तो समय कम पड़ जाएगा। जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी हुई, जगन्नाथ के भक्तों से जुड़ी हुई कई ऐसी कथा हैं। एक कथा है दासिया बाउरी की, जो उस समय प्रचलित नीच जाति के थे, लेकिन जगन्नाथ जी के बहुत ही परम भक्त थे। उन्होंने सोचा, मैं मंदिर के अंदर प्रवेश तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं अपने इष्ट देव भगवान श्री जगन्नाथ को श्रीफल देना चाहता हूं, तो ये कैसे दूं? भगवान ने अपना हाथ लंबाया और उनके हाथ से श्रीफल स्वीकार कर उसे भी धन्य किया। जब कांची अभियान की बात हुई, कांची के महाराजा से युद्ध हुआ उत्कल के गजपति महाराजा का, उसमें उत्कल के राजा की ओर से स्वयं भगवान जगन्नाथ और भाई बलभद्र काले और सफेद घोड़े में सवार होकर युद्ध किया, कांची के महाराजा को परास्त किया और गजपति महाराजा को धन्य किया। ये संक्षेप में ये कहानी है जगन्नाथ रथ यात्रा की। अब समय हो चला है आप लोगों से विदाई लेने का। इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो तीनों रथों पर गजपति महाराजा अपनी छेरा पहरा की नीति कर रहे हैं, अभी सुभद्रा जी के रथ पर हैं। जैसा कि क्रम है, पहले सोने की मूठ वाली झाड़ू से वो साफ करते हैं और फिर सुवासित चंदन मिश्रित जल से सिंचन करेंगे, फिर आरती करेंगे, चामर सेवा करेंगे। उसके बाद जगन्नाथ जी के रथ नंदी घोष पर वो सवार होंगे और उसी क्रम में अपनी सेवा प्रदान करेंगे। रथ पर चढ़ने के लिए ताल के जो वृक्ष के लकड़ी होती है, उससे बनी हुई एक विशेष प्रकार की जो सीढ़ी होती है, उसे चारमाल कहते हैं। तीनों रथों पर गजपति महाराजा अपनी सेवा पूरी कर ले, उसके बाद वो चारमाल निकाल लिए जाएंगे और अश्वों को बांधा जाएगा और उसके बाद सारथी को बिठाया जाएगा, फिर रथों को खींचने का काम शुरू होगा, जिसका समय 4 बजे निर्धारित किया गया था। और जैसा कि लग रहा है कुछ देर में है, अभी ये प्रक्रिया पूरी होगी तो वहाँ रथ को खींचने का काम भी बहुत जल्द शुरू हो जाएगा, लेकिन उसका आंखों देखा हाल हम आपको सुना नहीं पाएंगे। हम आपको कुछ ही देर में दिल्ली ले चलेंगे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी कटक केंद्र द्वारा प्रस्तुत हुआ और श्री जगन्नाथ जी के रथ यात्रा का पुरी से सीधा प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप लोग सुन रहे थे। मुझे आशा है आप सभी को आनंद

0: आया होगा। भगवान जगन्नाथ जी का आपको आशीर्वाद मिले। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे जय किशोर नागर जी, विनय कुमार सामंतराय जी, तकनीकी सहायता में मिहिर कुमार सामल और शंभुनाथ बेहरा थे। इसी के साथ मैं मोहन मजीठिया, मेरे साथी कमेंटेटर प्रोफेसर रजनीकांत नायक जी से उनके साथ मिलकर आपके साथ ये जो समय बिताया इसके लिए आभार व्यक्त करते हुए विदाई लेते हैं और अब आप लोगों को ले चलते हैं आकाशवाणी दिल्ली को। जय श्री जगन्नाथ।
1: अभी आप महाप्रभु जगन्नाथ जी के धाम ओडिशा के पावन।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने वैश्विक भू राजनैतिक संघर्षों के बीच उभरती सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों में घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की पांचवी बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान के कारण सभी देशों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बिम्स्टेक सदस्य देशों के लिए सहयोग करना, पारस्परिक लाभ के लिए निर्णायक कदम उठाना और आपसी चर्चाओं के माध्यम से समाधान खोजना अत्यंत आवश्यक है।
3: There is an urgent need for us.
4: हमारे लिए जरूरी है कि हम मिलकर काम करें, आपसी फायदे के लिए एक ठोस कदम उठाएं और उन बड़ी समस्याओं का समाधान आपसी बातचीत और विचार विमर्श से निकालें जिनका हम सभी सामना कर रहे हैं। बिम्स्टेक हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण और जीवंत क्षेत्रों को एक मंच पर लाता है। यहाँ 1,70,00,000,000 लोग रहते हैं जो दुनिया की आबादी का लगभग 22% है।
3: 22% of the world population.
2: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार का प्रयास एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां सीमाएं न सिर्फ सुरक्षित हों बल्कि अच्छी तरह से जुड़ी हुई भी हों। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा एक साथ आगे बढ़ें। नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन तकनीकी संगोष्ठी में श्री सिंह ने कहा कि उन्नत अवसंरचना हमेशा से विकसित सभ्यता की पहचान रही है। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रोहतांग में अटल सुरंग, उमलिंगला में विश्व की सबसे ऊंची वाहनों की सुरक्षित आवाजाही योग्य सड़क और लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर निर्मित सेला सुरंग जैसी ऐतिहासिक परियोजनाएं बीआरओ की क्षमताओं का जीवंत प्रमाण हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सतत कृषि विकास सुनिश्चित करने के लिए किसानों के बीच एकीकृत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया है। नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICARA के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि किसानों और वैज्ञानिकों के सामूहिक परिश्रम से असाधारण परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने CBSE पाठ्यक्रम के तहत नवीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई है और कहा है कि इससे विद्यार्थियों पर तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे 5वीं या 6ठी कक्षा में शुरू करना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सकें। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने केंद्र सरकार से कहा है कि वे नवीं कक्षा से तीसरी भाषा शुरू न करें। यह टिप्पणी मद्रास उच्च न्यायालय के विरुद्ध दायर तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई। भारत में पर्यावरण अनुकूल और सतत रेल आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए पहली हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी की कल शुरुआत होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर इसे रवाना करेंगे। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच चलेगी। ये हाइड्रोजन को बिजली में परिवर्तित करने वाली हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से संचालित है। नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने कहा है कि उड़ान योजना के अगले चरण का उद्देश्य 120 नए गंतव्यों तक कनेक्टिविटी बढ़ाना और अगले 10 वर्ष में 4 करोड़ लोगों को यात्रा करने में सक्षम बनाना है। नई दिल्ली में आज उड़ान के अगले चरण पर आयोजित एक कार्यशाला को संबोधित करते हुए श्री नायडू ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि संशोधित योजना में व्यवहार्यता अंतर्निधि के लिए पात्रता का विस्तार किया गया है। वित्त मंत्रालय विद्युत मंत्रालय ने हितधारकों के परामर्श के लिए कॉरपोरेट औसत ईंधन दक्षता 2027 के मानदंडों का आज मसौदा जारी किया है। ये प्रस्तावित मानदंड 2027-28 से

0: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
1: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
0: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
1: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
2: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
3: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।

0: 8th February 2027. The selected candidates will receive 20,000 rupees plus 27% of HRA with experience-based increments as per project norms. The walk-in interview will be held on 28th July 2026 at Division of Genomics Resources, Room G206, ICAR-NBPGR, Pusa Campus, New Delhi. The upper age limit is 50 years, with relaxations for reserved categories as per government rules. The National Sports University NSU Imphal, under the Ministry of Youth Affairs and Sports, has invited applications for various teaching and non-teaching posts. The vacancies include Professor, Associate Professor and Assistant Professor in Physical Education, Sports Medicine and Sports Coaching, Athletics. Non-teaching vacancies include Deputy Controller of Examination, Section Officer, Assistant Section Officer, Accountant, Assistant Librarian, Private Secretary, Library Assistant, Physiotherapist and Nursing Attendant. Eligible candidates must submit their applications along with supporting documents by 31st July 2026 to the Registrar, National Sports University, Imphal. Submission of the hard copy is mandatory, even if the application is sent by email. Detailed eligibility criteria and application forms available at the website, that is at www.nsu.ac.in. I repeat the website, it is www.nsu.ac.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: नमस्कार रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा. आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित. राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय इम्फाल मणिपुर आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन. प्रोफेसर शारीरिक शिक्षा, एसोसिएट प्रोफेसर खेल चिकित्सा, असिस्टेंट प्रोफेसर कोचिंग एथलेटिक्स. गैर शिक्षण पदों के लिए भी आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं. पद हैं परीक्षा उपनियंत्रक, सहायक लाइब्रेरियन, अनुभाग अधिकारी, निजी सचिव, सहायक अनुभाग अधिकारी, फिजियोथेरेपिस्ट, अकाउंटेंट, लाइब्रेरी सहायक और नर्सिंग अटेंडेंट. आवेदन फॉर्म, शुल्क, योग्यता के नियम, आवेदन कैसे करें आदि जैसी जानकारी के लिए देखिए राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की वेबसाइट nsu.ac.in. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक नवरत्न तथा प्रमुख पेशेवर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है जो अपने पंचकुला यूनिट के लिए इन पदों हेतु आवेदन आमंत्रित कर रही है. वरिष्ठ अभियंता, रिक्तियों की संख्या 1, वरिष्ठ सहायक अभियंता, भूतपूर्व सैनिक, रिक्तियों की संख्या 5, वरिष्ठ सहायक अधिकारी, भूतपूर्व सैनिक, पद 1 और परियोजना अभियंता रसायन शास्त्र, पदों की संख्या 1. इच्छुक अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन के लिए देख सकते हैं वेबसाइट www.bel-india.in. भारतीय प्रबंध संस्थान शिलोंग इन प्रशासनिक पदों के लिए भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित कर रहा है. उप महाप्रबंधक ज्ञान सेवाएं 1 पद, उप महाप्रबंधक पूर्व छात्र संबंध 1 पद, वरिष्ठ प्रबंधक लेखा परीक्षा 1 पद, प्रबंधक अकादमिक 1 पद, प्रबंधक प्रत्यायन 1 पद, सहायक प्रबंधक आईटी अवसंरचना 1 पद और सहायक प्रबंधक मैकेनिकल अवसंरचना 1 पद. अधिक जानकारी के लिए देखिए भारतीय प्रबंध संस्थान शिलोंग की वेबसाइट www.iimshillong.ac.in. ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है 20 जुलाई 2026. बसु विज्ञान मंदिर कोलकाता 1 पद के लिए ऑडिट एंड फाइनेंस ऑफिसर की भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित कर रहा है. ये भर्ती डेपुटेशन के आधार पर है जिसमें पे लेवल 10 रहेगा तथा पद की अवधि 3 वर्ष है. विस्तृत रिक्ति विज्ञापन आवेदन प्रक्रिया नियम और शर्तों तथा अन्य निर्देशों के

0: कृपया देखिए वेबसाइट www.jcbose.ac.in।
1: आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
2: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के संघ के साथ मैं हूं करिश्मा राय और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
2: हेलो करिश्मा, हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द न्यूज मैगजीन प्रोग्राम परिक्रमा ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज़ ऑन एफएम गोल्ड। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय एंड विद मी टुडे इज ऑफ कोर्स माय को होस्ट करिश्मा राय।

0: Yes, and we begin a program with the news headlines at this hour.
1: भारत ने भू राजनीतिक संघर्षों के बीच सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों में घनिष्ठ सहयोग का आह्वान किया.
0: डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह सेज गवर्नमेंट इज इंश्योरिंग डेवलपमेंट एंड नेशनल सिक्योरिटी प्रोग्रेस ऑन द सेम पाथ.
1: सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई को तीसरी भाषा पांचवी या छठी कक्षा से शुरू करने का सुझाव दिया.
0: इंडिया इज सेट टू लॉन्च फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन टू प्रमोट ग्रीन and sustainable rail mobility.
1: बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने विश्व के पांचवें नंबर की खिलाड़ी चीन की हानियों को हराकर जापान ओपन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया.
0: And in cricket, second ODI between India and England to be played in Cardiff this evening.

0: पीवी सिंधु ने विश्व की पांचवी नंबर की खिलाड़ी चीन की हानियों को हराकर जापान ओपन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया.
1: एंड इन क्रिकेट सेकंड ओडीआई बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड टू बी प्लेड इन कार्डिफ दिस इवनिंग. And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about Artificial Intelligence Appreciation Day. Well, Karishma, today, July 16th, we are celebrating AI Appreciation Day, a day dedicated to recognizing how artificial intelligence is shaping our lives.
0: बिल्कुल सही कहा अभिषेक आपने, लेकिन इसके साथ ही हमारे श्रोताओं के लिए भी यहाँ पर एक सवाल है कि आज आपने बिना जाने कितनी बार AI का इस्तेमाल किया?
1: And you know what, Karishma, I asked my phone for directions this morning.
0: और कल रात मुझे अपने स्ट्रीमिंग ऐप पर फिल्मों के सुझाव मिले, ये भी AI है.
1: Exactly. So whether it's helping us navigate traffic, translating languages, filtering spam emails, answering questions through chatbots, or even suggesting the perfect playlist, AI has quietly become part of a daily routine.
0: और यह कमाल की बात है कि जो चीज कभी साइंस फिक्शन फिल्मों का हिस्सा हुआ करती थी, अब वह डॉक्टरों, शिक्षकों, किसानों, कारोबारियों और यहाँ तक कि कलाकारों की भी मदद कर रही हैं.
1: And let's talk about healthcare first, Karishma, shall we? जी. AI is helping doctors detect diseases earlier, analyze medical scans faster, and even speed up research for new medicines.
0: और शिक्षा के क्षेत्र में AI सीखने की प्रक्रिया को ज्यादा आसान बना रहा है. छात्र अपनी गति से सीख सकते हैं, जबकि शिक्षक AI टूल्स का इस्तेमाल करके रिसर्च और लेसन प्लानिंग को आसान बना सकते हैं.
1: Yes, Karishma, and businesses are using AI to automate repetitive tasks and improve customer service, while banks rely on it to detect fraud in real time.
0: बिल्कुल सही कहा, और इसके साथ ही श्रोताओं, किसानों को भी फायदा हो रहा है. AI पावर टूल्स फसल की सेहत पर नजर रख सकते हैं, मौसम का अनुमान लगा सकते हैं, और यहाँ तक कि सिंचाई के लिए सबसे सही समय क्या है ये भी बता सकते हैं.
1: Of course, Karishma, and we can't forget the creative world. Writers, designers, musicians, video editors, and software developers are increasingly using AI to brainstorm ideas, speed up workflows, and handle routine tasks.
0: बिल्कुल, लेकिन एक जरूरी बात ये है कि AI एक शक्तिशाली सहायक है, ना कि इंसानी रचनात्मकता या निर्णय लेने की क्षमता का विकल्प.
1: Absolutely, Karishma. AI has impressive capabilities, but it also has its limitations, and it can sometimes generate incorrect information, misunderstand context, or reflect biases from the data it has been trained on.
0: बिल्कुल, और इसके साथ ही इंसानों के बिल्कुल उलट AI में भावनाएं, सामान्य समझ या जवाबदेही नहीं होती है, इसलिए इंसानी निगरानी जरूरी है, खासकर हेल्थ केयर, कानून और फाइनेंस जैसे क्षेत्रों में.
1: सो करिश्मा, AI Appreciation Day isn't just about celebrating technology, it's also about understanding its strengths, its limitations and how we can use it responsibly.
0: और यह बात आज के समय में खास तौर पे अहम हो जाती है, क्योंकि गलत जानकारी, प्राइवेसी, नैतिकता और नौकरियों के भविष्य को लेकर बातचीत लगातार बढ़ रही है. हालांकि AI की अहमियत समझने का मतलब उसकी कमियों को भी पहचानना है.
1: Absolutely, Karishma, but AI can still produce incorrect information, reflect biases present in the data it is trained on, and struggle with context or human judgment. And it lacks emotions, common sense and accountability, making human oversight essential, particularly in sensitive areas such as healthcare, law and finance.
0: और श्रोताओं, इसके साथ ही भारत में AI देश के डिजिटल भविष्य का एक अहम हिस्सा बनता जा रहा है. इंडिया AI मिशन जैसी पहलों के जरिए AI इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने, कुशल टैलेंट तैयार करने और ऐसे AI के निर्माण को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है जो सुरक्षित, समावेशी और सभी के लिए फायदेमंद हो.
1: Yes, Karishma, and I'd like to tell our listeners that India is at a pivotal stage in its development journey with artificial intelligence, AI, emerging as a key enabler. For India, AI functions as a strategic national tool to drive the democratization of technology, ensuring access, inclusion, and equity at scale. And this technological revolution has opened vast opportunities for advancements across every domain of human endeavor.
0: और ग्लोबल टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस फोरम में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है, जो बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी पर अंतर्राष्ट्रीय नीतिगत चर्चा को आकार देने में उसकी बढ़ती भागीदारी को दर्शाता है. इसी बढ़ती वैश्विक भागीदारी के तहत इस साल की शुरुआत में नई दिल्ली में

0: इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 आयोजित किया गया था.
1: And addressing the gathering on the occasion, Prime Minister Narendra Modi has said, "We are entering an era where human and intelligent system co-work, co-create and co-evolve."
2: We are entering an era where humans and intelligent systems co-create, co-work and co-evolve. AI हमारे काम को और अधिक smart, efficient और impactful बनाएगा.
0: तो इसके साथ ही अभिषेक, यहाँ पर श्रोताओं के लिए एक मजेदार सवाल ये भी है कि अगर आप एआई का इस्तेमाल करके रोजमर्रा की कोई एक समस्या हल कर सकते हो तो वो क्या होती. क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए तो पक्का अपनी कभी ना खत्म होने वाली टू डू लिस्ट को व्यवस्थित करना होगा.
1: एब्सोल्युटली करिश्मा, टू कंक्लूड आवर डिस्कशन हियर टुडे, एज वी सेलिब्रेट एआई एप्रिसिएशन डे, लेट्स रिमेंबर दैट टेक्नोलॉजी इज एट इट्स बेस्ट व्हेन इट एंपावर्स पीपल, supports creativity and helps solve real world challenges. The future of AI isn't just about smarter machines, it's about making smarter choices and how we use them. So stay curious, stay informed and keep exploring the possibilities.
0: और इसके साथ ही अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है.
1: Yes, Prime Minister Narendra Modi today extended greetings to the Kutchi community on the occasion of Ashari Beach, the Kutchi New Year. And in a social media post, Mr. Modi invoked the traditional Kutchi song and said that whenever the Kutchi settles after achieving success, the spirit of Din Din Kutch resonates. The Prime Minister said that Ashari Beach reflects the enduring cultural heritage and strong sense of the Kutchi community.
0: और पूरे सौराष्ट्र में कच्छ ही एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां एक विशिष्ट और रंग बिरंगी सांस्कृतिक परंपरा का इतिहास छुपा हुआ है. यहां नए साल की शुरुआत भी बेहद अनोखे अंदाज में होती है. आज आषाढ़ी दूज का पावन पर्व है, यानी कि आज से कच्छवासियों का नव वर्ष शुरू हो रहा है.

0: कच्छ और कच्छ से बाहर रहने वाले सभी कच्छी लोग आज असाढ़ी दूज से शुरू होने वाले कच्छी सावन 2083 के नए साल का बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ स्वागत कर रहे हैं। दशकों पहले इस दिनों का एक अलग ही अंदाज में मनाया जाता था। नए साल के नए सिक्के जारी किए जाते थे, नया पंचांग निकाला जाता था और विभिन्न आकर्षणों के साथ शहर में नगर यात्रा निकाली जाती थी। साथ ही शाही दरबार सजता था जिसमें सभी नगरवासी भाग लेते थे। राजाशाही के दौर से चली आ रही यह परंपरा आज भी उतने ही उत्साह और उल्लास के साथ मनाई जाती है। कच्छ के मुख्य मथक भुज में पिछले दो वर्षों से आयोजित होने वाले सांसद कार्निवल ने इस उत्सव में एक नया आकर्षण जोड़ दिया है। भुज के ऐतिहासिक हमीरसर तालाब के किनारे आज शाम आयोजित होने वाले इस कार्निवल में 47 से अधिक झांकियां और 1200 से अधिक कलाकार कच्छ के गौरवशाली वैभव को उजागर करने वाली प्रस्तुतियां देंगे। इस मौके पर हमीरसर के तट को रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाया गया है। मुख्य मथक भुज के अलावा जिले के अन्य शहरों, गांवों तथा जिले के बाहर भी कच्छी नव वर्ष का यह जश्न धूमधाम से मनाया जा रहा है। असाढ़ी दूज के स्वागत के लिए विभिन्न स्थानों पर कई धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। कच्छ हो या कच्छ से बाहर, जहां भी कच्छी समुदाय के लोग रहते हैं, वे इस दिन को नए साल के रूप में बेहद खास तरीके से मनाते हैं। इस पावन अवसर पर कच्छ में कई स्थानों पर रथ यात्राओं का भी आयोजन किया गया है। परिक्रमा के लिए भुज से परेश मारू।
1: Yes, and the hill shrine of Sabarimala opens today for its monthly rituals, allowing devotees to offer prayers until June 21st. We have more from a Thiruvananthapuram correspondent. Hare.

0: वहीं हैदराबाद में आज बोनालू उत्सव की शुरुआत हुई। यह उत्सव पूरे एक महीने तक चलेगा। आषाढ़ महीने के दौरान महिलाएं मंदिरों में देवी की पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करती हैं और बोनालू अर्पित करती हैं। एक रिपोर्ट।
1: The Ashada Masam Bonalu Festival, a symbol of Telangana's culture and traditions, began today with grandeur at Golconda Fort in Hyderabad. The celebration started with the offering of the first bonam to Golconda Sri Jagadamba Mahankali. The first bonam, consisting of 11 bonams, was offered to Jagadamba Mahankali. On behalf of the state government, the golden bonam set out from Langar House towards Golconda Fort. Assembly Speaker Gaddam Prasad Kumar and Ministers Ponnam Prabhakar, Konda Surekha offered Pattu Vastralu to the goddess. This festival will continue for nearly a month from today until August 13th. During the four Sundays of the month of Ashadam, Bonalu are celebrated with great splendor at the Golconda Sri Jagadamba Mahankali, Sikindrabad Ujjaini Mahankali and Lal Darwaja Simhavahini temples in Hyderabad. Devotees offer Bonalu and fulfill their vows. Saptagiri for Parikrama, Akashwani News, Hyderabad.
2: Indian Council of Medical Research, ICMR, study has demonstrated that drone-assisted transport of tuberculosis, TB, sputum samples can reduce diagnosis time and patient expenses. We have a report.
3: The study was conducted by ICMR as part of its flagship iDrone initiative in Yadadri Bhuvanagiri district of Telangana in collaboration with AIIMS BB Nagar and the district TB office under National TB Elimination Program. The study compared the conventional system of patient travel for TB diagnosis with a drone-enabled model. The study enrolled 840 participants and found that the median turnaround time for TB diagnosis decreased from 15 days to 5 days following the introduction of drone-based sample transport. Diagnostic delays were also significantly reduced, enabling earlier confirmation of disease and facilitating faster clinical decision-making. It showed that sputum samples can significantly improve access to diagnostic services for people living in remote areas, offering a substantial reduction in the financial burden borne by the patients. Priya Mondal for Parikrama.
0: मध्य प्रदेश के इंदौर एयरपोर्ट को एक नई पहचान मिली है। अब यहां सीधे विदेश की उड़ान भी भरी जा सकती है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे भोपाल संवाददाता अभिनय गोयल।
4: मध्य प्रदेश की पहली अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर से संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की राजधानी अबू धाबी के लिए पहली सीधी उड़ान को कल रवाना किया। यह सेवा प्रदेश की नागरिक विमानन नीति 2025 के तहत शुरू की गई है। इस मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा,
5: यशस्वी प्रधानमंत्री के जैसा उनके शब्दों में था कि हवाई जहाज मैं हवाई चप्पल वाला भी बैठ सकता है। इस भावना के आधार पर अर्थात सबको सर्वसुलभ होना चाहिए, हमारी एविएशन नीति के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के लिए पर फ्लाइट 15 लाख रुपया सरकार पर उड़ान के लिए देने को तैयार है और इसी सिलसिले में ये बड़ी सौगात मिल रही है।
4: एयर इंडिया एक्सप्रेस की यह उड़ान सप्ताह में चार दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को संचालित होगी। इस नई सेवा से इंदौर और मालवा निमाड़ क्षेत्र के यात्रियों को बड़ा फायदा मिलेगा। अब तक अबू धाबी जाने के लिए यात्रियों को दिल्ली या मुंबई से होकर जाना पड़ता था, जिससे 7 से 8 घंटे लगते थे। नई सीधी उड़ान से ये सफर करीब 3 घंटे 15 मिनट में पूरा हो सकेगा। इस हवाई सेवा से व्यापार, निवेश, पर्यटन और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की भी उम्मीद है। परिक्रमा के लिए अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
2: Chief Minister Dr. Pramod Sawant called upon the youth, women and aspiring entrepreneurs to shape the future through innovation, modern technology and continuous skill development. He was speaking at the state-level World Youth Skills Day program organized by the Directorate of Skill Development at the Kala Academy in Panaji.
6: Chief Minister Dr. Pramod Sawant urged young people, women and aspiring entrepreneurs to make the best use of innovation, emerging technologies and new opportunities to build successful careers and businesses. Addressing the state-level World Youth Skills Day program at Kala Academy in Panaji, the Chief Minister stressed the importance of skilling, reskilling and upskilling in today's rapidly changing world. The Chief Minister said the Go government is committed to creating a highly skilled workforce by modernizing industrial training institutes across the state. He informed that around 180 crore rupees are being invested in upgrading ITIs with modern infrastructure and training facilities. On the occasion, the Chief Minister inaugurated the Artisan Fair, showcasing the products and innovation by students, artisans and self-help groups. The exhibition will remain open to public till the 17th of this month. The program highlighted the

0: importance of skill development in driving employment, entrepreneurship, and economic growth in Goa. Nikhil Upadhyay, Akashwani News, Panaji.
1: उत्तर प्रदेश में 12 जुलाई को एक पेड़ मां के नाम के तहत चलाए गए पौधारोपण महाअभियान में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में नीम, पीपल और बरगद का पौधा लगाकर इस महाअभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर श्री योगी ने कहा कि यह महायज्ञ धरती माता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का अवसर है। प्रदेश भर में चलाए गए पौधारोपण महाअभियान के क्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ स्थित जनभवन परिसर में सफेद चंदन का पौधा रोपित किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि सभी को प्रकृति के संरक्षण और स्वस्थ जीवन पद्धति को अपनाने का संकल्प लेना चाहिए।
2: गोरखपुर में इस महाअभियान के शुभारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और प्रदेश में वनाच्छादन का भी विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि यह अभियान प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, आने वाली पीढ़ियों के प्रति उत्तरदायित्व और जीवन संरक्षण का संदेश देता है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि परिवार के शुभ अवसरों, मांगलिक आयोजनों और विशेष दिनों को वृक्षारोपण से जोड़कर हमें प्रकृति के प्रति अपना दायित्व निभाना चाहिए। पौधारोपण महाअभियान में जन प्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों की भागीदारी भी उल्लेखनीय रही। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बाराबंकी में पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के साथ आगरा में पौधारोपण किया। कानपुर नगर में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान और देवरिया में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने पौधा लगाया। प्रदेश में इस वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भी 5 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए गए थे। इसको मिला दें तो प्रदेश में इस साल अब तक लगभग 40 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी समाचार गोरखपुर से प्रेमचंद्र गुप्ता।
3: Yes, and
1: और अब चलेंगे खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल।
4: पीवी सिंधु जापान ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने विश्व की 5वें नंबर की खिलाड़ी चीन की हान यू को मात्र 35 मिनट में लगातार सेटों में हराकर सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। हालांकि प्री क्वार्टर फाइनल में तनिषा क्रास्टो और ध्रुव कपिला की मिक्स्ड डबल्स जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज शाम भारतीय समय के अनुसार 5:30 बजे कार्डिफ में खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने बर्मिंघम में पहले एक दिवसीय मैच में मेजबान इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया था। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मुकाबला रविवार को लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर खेला जाएगा। वहीं फुटबॉल में फीफा विश्व कप में अर्जेंटीना ने फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। अब फाइनल मुकाबले में रविवार को अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा।
3: Yes, and moving on to some business news. Benchmark domestic equity indices ended on a flat note today. The Sensex added 1 point to close at 7,187. The Nifty dipped 6 points to settle at 24,073. In the broader market, on the National Stock Exchange, mid-cap 100 dropped 0.4% and small-cap 100 index fell by 0.1%. For more updates about the market activities, tune into Akashwani's bilingual program, Market Mantra, at 6:30 p.m. this evening.
1: और इसके साथ ही श्रोताओं, अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
3: Yes, and K.V. Subbanna passed away on this day in 2005. He was an acclaimed Indian dramatist, writer, and cultural icon in the Kannada language. He is globally celebrated for transforming the cultural landscapes of rural Karnataka by blending local traditions with world cinema, literature, and theatre. In 1949, Subbanna founded the Nilana Kanatheshwara Natya Sangha, or Ninasam, in his native village of Hegodu, Karnataka. And under his leadership, the small amateur group evolved into a world-famous theatre institution and school. And bridging the local and the global through Ninasam, he introduced rural audiences to Kannada adaptations of classical international playwrights like Shakespeare, Moliere, and Brecht alongside modern Indian plays.
1: तो इसके साथ ही केवी सुबन्ना का मानना था कि कला और संस्कृति समाज परिवर्तन का सशक्त माध्यम है और उन्होंने

0: भारतीय रंगमंच और कन्नड़ संस्कृति में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार समेत कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। और इसके साथ ही श्रोताओं, आज भारत के महान हॉकी खिलाड़ियों में शुमार धनराज पिल्ले का जन्मदिन है। उनका जन्म 16 जुलाई यानी कि आज ही के दिन 1968 में महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। अपनी अद्भुत गति, शानदार खेल प्रतिभा और आक्रामक शैली के दम पर धनराज पिल्ले ने भारतीय हॉकी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाई। उन्होंने अपने करियर में 4 ओलंपिक, 4 हॉकी विश्व कप, 4 एशियाई खेल और 4 एशिया कप में भारत का प्रतिनिधित्व किया, जो अपने आप में एक अनूठी उपलब्धि है। धनराज पिल्ले ने भारतीय टीम की कप्तानी भी की और कई महत्वपूर्ण टूर्नामेंट में टीम को यादगार जीत दिलाई। उनकी कप्तानी में भारत ने 1998 के बैंकॉक एशियाई खेलों में 32 वर्षों के बाद स्वर्ण पदक जीता था। उन्हें अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न और पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही 2002 में उन्हें FIH प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए भी नामांकित किया गया था।
1: Yes, and we also remembering Borun De, who was a highly eminent Indian historian and academic who specialized in modern Indian history, the Bengal Renaissance and the British constitutional history. He is best known for building several of India's premier academic institutions and serving as a leading authority on the 17th and 18th century social and economic history. He was the founder director of the Center for Studies in Social Sciences, Calcutta, and the Maulana Abul Kalam Azad Institute of Asian Studies. He served as the first professor of social and economic history at the Indian Institute of Management, IIM, Kolkata. He chaired the West Bengal Heritage Commission and worked as an honorary state editor for the West Bengal District Gazetteers. He held leadership roles across major cultural organizations, including serving as a vice president of the Asiatic Society and as a trustee for the Victoria Memorial. And he has authored numerous historical research papers and books, most notably Secularism at Bay, Uzbekistan at the Turn of the Century.
0: और इसके साथ ही श्रोताओं, आज हिंदी सिनेमा और टेलीविजन की सशक्त अभिनेत्री सुरेखा सीकरी की पुण्यतिथि है। सुरेखा सीकरी का जन्म 19 अप्रैल 1945 को नई दिल्ली में हुआ था। उन्होंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से अभिनय की शिक्षा प्राप्त की और रंगमंच, सिनेमा तथा टेलीविजन तीनों माध्यमों में अपने दमदार अभिनय क्षमता का परिचय दिया। उन्होंने तमस, मम्मो, बधाई हो, नसीम, सरदारी बेगम और जुबैदा जैसी चर्चित फिल्मों में यादगार भूमिकाएं निभाई। इसके अलावा टेलीविजन पर भी बालिका वधु में निभाया गया उनका किरदार दादी सा का आज भी घर घर में लोकप्रिय है।
1: And she was, of course, a proud graduate of the National School of Drama, NSD, 1968, and spent over a decade performing with the NSD Repertory Company, establishing herself as a formidable stage talent before transitioning to the screen. Alongside a national award, she received a Filmfare Award for Badhai Ho and the prestigious Sangeet Natak Academy Award in 1989 for immense contributions to Hindi theatre. Let's go ahead and listen to one of her dialogues from one of her hit movies.
2: लो, अरे ये क्या 5 पोशाक ले आई? हम क्या ससुराल जा रहे हैं? और वहां भी कोई साली सैलज कहाँ है जो रीत जाएगी?
3: हाँ, होगी भी तो क्या, ऐसे कौन से सजीले नौजवान हो अब। हाँ, वो तो हम ही थे जो।
2: तुझे क्या लगता है मैं बूढ़ा हो गया हूँ? मर्द 60 में पाठा होता
3: है। तुम्हारे जैसा नहीं, वो तो जो सुबह शाम घी खावे, मक्खन खावे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने वैश्विक भू राजनीतिक संघर्षों के बीच उभरती सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों में घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की पांचवी बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान के कारण सभी देशों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बिम्स्टेक सदस्य देशों के लिए सहयोग करना, पारस्परिक लाभ के लिए निर्णायक कदम उठाना और आपसी चर्चाओं के माध्यम से समाधान खोजना अत्यंत आवश्यक है।
1: There is an urgent need for us.
2: हमारे लिए जरूरी है कि हम मिलकर काम करें, आपसी फायदे के लिए एक ठोस कदम उठाएं और उन बड़ी समस्याओं का समाधान आपसी बातचीत और विचार विमर्श से निकालें जिनका हम सभी सामना कर रहे हैं। बिम्स्टेक हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण और जीवंत क्षेत्रों को एक मंच पर लाता है। यहाँ 1,70,00,000,000 लोग रहते हैं जो दुनिया की आबादी का लगभग 22% है।
1: 22% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार का प्रयास एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां सीमाएं न केवल सुरक्षित हों बल्कि अच्छी तरह से जुड़ी हुई भी हों। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा एक साथ आगे बढ़ें। नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन की तकनीकी संगोष्ठी में श्री सिंह ने कहा कि उन्नत अवसंरचना हमेशा से विकसित सभ्यता की पहचान रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने CBSE पाठ्यक्रम के तहत 9वीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई और कहा कि इससे विद्यार्थियों पर तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे 5वीं या 6ठी कक्षा में शुरू किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सकें। न्यायमूर्ति VB नागरत्ना और न्यायमूर्ति R महादेवन की पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि वे 9वीं कक्षा से तीसरी भाषा शुरू न करें। यह टिप्पणी मद्रास उच्च न्यायालय के विरुद्ध दायर तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज नई दिल्ली में विश्व आर्थिक मंच के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने बताया कि उन्होंने सतत विमानन ईंधन को बढ़ावा देने, इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेकऑफ अर्थात जमीन से सीधे उड़ान और लैंडिंग के लिए बुनियादी ढांचे के बारे में चर्चा की। विद्युत मंत्रालय ने हितधारकों के परामर्श के लिए कॉरपोरेट औसत ईंधन दक्षता 2027 मानदंडों का आज मसौदा जारी किया है। ये प्रस्तावित मानदंड 2027-28 से 2031-32 की अवधि के दौरान देश में बिक्री के लिए निर्मित या आयात किए जाने वाले M1 श्रेणी के यात्री वाहनों पर लागू होंगे। M1 श्रेणी के अंतर्गत वे मोटर वाहन आते हैं जो यात्रियों को ले जाने के लिए डिजाइन किए गए हैं और जिनमें ड्राइवर के अलावा 8 से अधिक यात्रियों के बैठने की क्षमता नहीं होती है। मंत्रालय ने 6 अगस्त तक इस मसौदा मानदंडों पर हितधारकों और आम जनता से सुझाव आमंत्रित किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जिंद रेलवे स्टेशन पर जिंद और

0: करूं।
1: सावन का महीना पवन करे शोर,
0: पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर,
1: पवन करे शोर।
0: हाँ

0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस साल 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के तहत 1,600 से अधिक वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे और लगभग 1,00,00,000 किसानों से उन्होंने संपर्क किया। वैज्ञानिक विशेष रूप से उन जिलों में पहुंचे जिनके अल नीनो से प्रभावित होने की आशंका है। उन्होंने बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पिछले वर्ष के दौरान कई उन्नत किस्म की फसलें विकसित की हैं।
1: एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलिएंट है, 29 बायोफोर्टिफाइड है, ये विकसित की है। बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अलनीनो के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजनाएं बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूं आईसीएआर कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार का प्रयास एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां सीमाएं न केवल सुरक्षित हों बल्कि अच्छी तरह से जुड़ी हुई भी हों। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा एक साथ आगे बढ़े। नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन की तकनीकी संगोष्ठी में श्री सिंह ने कहा कि उन्नत अवसंरचना हमेशा से विकसित सभ्यता की पहचान रही है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में तेजी से सकारात्मक बदलाव के कारण भारत वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचा है। चेन्नई में उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से सरकारी योजनाएं देश के सुदूरतम क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक नागरिक तक पहुंच रही हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत सरकार का लक्ष्य है और इससे भारत एक वैश्विक शक्ति बनेगा। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में ये मात्र 19% था। उन्होंने कहा कि ये सबका साथ सबका विकास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमरीका के समूह में शामिल हो जाएगा। तृणमूल कांग्रेस के एक और राज्यसभा सांसद कोयल मल्लिक ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर इस्तीफा सौंपा। वो इस साल अप्रैल में राज्यसभा के लिए चुनी गई थी। कोयल तृणमूल कांग्रेस की चौथी राज्यसभा सांसद हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित आतंकी वित्त पोषण और अवैध घुसपैठ नेटवर्क से जुड़े एक मामले में आज 13 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया।

0: लंका क्या मांगना बहुत मौका खुया था
1: लंका बहुत लंका का किसान तो है उनको मांसों पे सी जब उनको मान जागर होगा आम है जागर होगा थाने ऐटा खायो लंका आम होंगे का भाई के ऐटा का जंगन फंगाई जंग मुसुक हम करें जो कौन लंगे थांगा दिख रहा है ना निबसार वान नंग प्योगी ने रहा का मुसुक हम नो नंग प्योगी रहा का रहा बने पड़े हंगा के तमोंग ना बस शादी के जोखन नौको गोई नौको फिर और भाई प्रोंगे बो खरा पेंग हिमा या शादी की वो एक्साइट हो खरा खरा का हिमी भाई नहीं था अंगे अब रो नंग माना ही नहीं जे आमो तामने कारण ही
0: तांगे खा बो
1: बुझा भी जाए हाँ बाबी ने बहाना रो बो खरांग मनी तो विभिन्न कारण तो उन्हें याकुंग रो अनेक नबीने बजागाओ आमो दुखमान नामो ना मैं ना करा
0: फिर बाव जे बुगरां के फुंगो फियोग रोपर कहाँ मासे
1: कहाँ मासे फाइपर उनके खोरा का ही
0: ठंका
1: ठंगाई आमोनो संग आमोनो ना माना ही नहीं जी तामनी कारण नहीं इनका ना जोखन बीने बिया वो जो दी बोधु नुंजा का बस हजा का है आप लोग ऐसे मने खाचे ना जी आमो ब्लैक क्वार्टर बाटला रोकनो अंगे सिन कॉक ब्रो का बहिं गए उनको हनो दा जो उन बॉस बॉस शब्द हनो ये रोक में जागो दा तांग हिमालय और बहन बिसिंगो आमो ताम खाए बीने जी मांसो पेशी तमने आमोनो आरो थांग बिसिंगो हाब याजियों गैस फॉर्म खाची रो गैस फॉर्म उनका के तो बहुत बिसिंगो सेंसिन निजी बहुत वो गैस उनका के बहुत खुद जाती बा उनका आ बहनो वो सिंग तांगे ने क्या शब्द होंगे बॉस बॉस शब्द होंगे आमोने आमोने बागे सिंग बॉस बॉस शब्द होंगे हनो ता उनका आमोने बागे आमो हाई हिंगा का सिंग बनो पुला चिकित्सा मा खाई रहना चिकित्सा खाई रहना निथांग आगे सिंग बनो आयोंग नो मा बताना है बिनी बहानो आमो बहान जागा वो सिंग इंजेक्शन रोग मारो ना गुरी वो इंजेक्शन जाते आमो एक तो जागा उनका का छा सोरियो ना सोरो हुई थाना
0: सोरो थाना है
1: सोरो थाना है कौन टा 24 घंटा निबिसिंगो ना चिकित्सा खाई रहना आमो सोरो हुई थाना है सोरो हुई थी थाना है आमो हंगा अमो हाई कहीं से बोलो चिकित्सा मार करें ना हंगा चिकित्सा नहीं तो पौरे से फायो उन्हें आखे तोना ना
0: उन्हें आखे तोना ना बोलते आवश्यक को पता
1: दौर का उन्हें आखे तोना नहीं हंगा से बुसा जाई भी नहीं बॉयज जोखन तीन मास संग आकर ना संग आबो अमुने कच्चे बैग टीका टोंगो पोलियो टोंगो टीका ना संग मासा रहना है मारे रहना है जा चीनी पारा या रोगो संग चीनी माल मत हम करे बेदे कोई जे सेंटर टोंगा जा रोगो संग आप बा संग समय समय ना संग जब मन अंकुला सका एफएमडी ने खुरा पिरा नहीं आउते वो मुसुनी बेमार कमोंग मानो तो आमुन बिसिंगो हंगजे कते गैसे हंगा का जे तोतरा फुली हुई थी नोक माने थी माने जे
0: मुसो को तोतरा बाद
1: फुली हुई थी तोतरा फुली माने तो विभिन्न कारण तो अनेक समय ये बिनी छागो जोखन क्रीमी तो हंगा का बहुत तोतरा फुली हो हंगे तोतरा फुली माने गैसे बेमार तो जे हेमरेजिक सेप्टिसिमिया ने गैसे बेमार तो बैक्टीरिया बाइंगो आमो बो गैसे हामिया बेमार न आमो तोतरा फुल नुंगनुग नाइट बिन छागो तोतरा फुली बिनी जे खगलाई चलाओ तो फुली हुई जाऊंगा अनेक समय नुंग नाई नुखा का इनके बोखल दिफेना फेना अखरी जाऊंगा गाड़ा चायंग नाई
0: तोतरा से सजग तो
1: हंगे टेम्परेचर बिन छागो 105 106 डिग्री फारेनहाइट रखो हुई नाई इनके खुटी फेना फेना नाई इनके बहुत फुली नाई आधा चायंग वे दापसा कलाई थी था नहीं गा अमो हाई बेमार हो ना बो कासो उन याके तो ना उनका क्या तो संग बोनो चिकित्सा ना डॉक्टर ना हरी चिकित्सा मार खाए ना हंगा इन याके तो ना नहीं गए तो बोनो टीका मार हो ना संग तीन मास बॉयस हो ना संग बोनो टीका मार हो ना तीन मास बॉयस हो जोखन भी नहीं बॉयस संग खाका ना संग बोनो तीन मास नहीं बेमार सामान्य तीन दिन बिजिंगो बसर दुईटा खाई एक बेमार नीति का मार होना है तीन बेमार नहीं छा छबार खाई संग बेमार नकाशन ना संग आम टीका रही मात ना था আমনি ব্যাধি বতে বতঙ্গ বেমার যে তাবো সিনি পারা আম সাইরক নক যে জায়গা জায়গা আমি সিনি হাসতে নক যাব যে অ্যান্থ্রাক্স নে কাছে বেমার হামিয়া বেমার আমো হঙ্গে জেনেটিক ডিজিজ সঞ্জাগো জেনেটিক্স মানে সিনি যে যে বেমার মল মাতনে হইতে বড় কথা থাঙ্গো বা বড় নি হইতে মাল মাতাও
0: থাঙ্গো
1: আমন জেনেটিক ডিজিজ নিবেছে অ্যান্থ্রাক্স কাছে বেমার তঙ্গ তে

0: पानी खेत रोकने का गामबुरो रोकने का बार्ड फ्लू होने माने जेता बरग सल माने अमर फायक इनका तो रानी खेत रोकन तो हम कहीं काटे इंगिया खेत मानो बनो चलाई जो पलियो चारि बेमारों पी मानता भाई कई चारे ना बी बस जो बसा तकसा बसा तिकलाई सात दिन बिंगों जो रानी खेत रोकने एफन भैक्सीन लास्टा भैक्सीन भैक्सीन रखें टीका रोग हे काटे माने चौदह दिन निविशी टीका रोग आई बी डी इनफेक्शियस बार्सल डिजीज गामबुरु रोग हम जगह बेमार बेमार टीका ना चौदह दिन निविशी टीका नागर एक छब्बीस दिन निविशी लाचुटा वो जो रानी खेत रोगनी लाचुटा रोगनी भैक्सीन चार मानो दई रोग खारे मानो गामुनि पर दुई मास निविशी टक न रानी खेत रोगनी न आर टू बी भैक्सीन टीका हम जगह आ टीका नई मास निविशी टीका रिली मैं सिंह पारानी जो टक टक मगे थी तो माने हम थी आरोना पारा रोग तो सिंह माल माता हम कर पारा पारा हम जाए गुरु न सों टीका रोग पलियो रोग चारि जन जो आम हाई खाना खाई नी माल माता हम करे बेदे जो खाना खाई खबर हो टक रंग टीका रोग जा रहा बेमार फायता सिना नाइन पारा रोग टक रंग बेमार
1: मुगजाग मात्र कमी आम सैर टीका रोग सिर मार नुगेता भैक्सीन मार नुगेता
0: आमुनि बागि आं सहना नायो जे सिनि माल माता हम करे बेदेगुनि होते आं सखा जे टीका रोग रि तनो समय समय न सों पारा रोग थांगै टीका रोग बिसों बाद न जे मालिक पसों सों बा जुगा जुखा आं खाकाय बेलाय के का आनि जे टक नगन से टक टंग बा ब्रॉयलर फार्म टंग गा जागर गो सों टीका रोग नानि नांगनाय सखा गा सों थांगै रोग रियो माल माता हम करे बेदेन न सखा होते आं फ्री रोग रोग थांगा टीका रोग न रि तन मांगै न सों पारा रोग नि जिन टक रोग न सों काम काय रोग तनि मानै जा
1: कबा माल माता रो हाइना ताप ताप रो पान थैके बन फान थी तक फान थी ताकि नुक जामारे नुक मानक कमियां सरगा हाई कथी रोग चामार नुगे हम हाई जे जे बेमार मान जगह थी मारो अब चीनी बागे चामा बागे बस कहम हमिया बाहे दाम खाई
0: आओ आं तो बुलानो सका जे माल माता कथी रंग सों चामा के बेलैके हामिया कलाइय कारण आरो तो आम जीवाणु टंगी बथिका तम यंग टंगी थी हम तो केवल सैमे हंगे जे माल माता जैसे माल माता फान मुसुक थैक हाखर रगो फबी जन्दी रग रुई ब्लिचिंग पाउडार रग रुई फबी रिमा खाई ना बेलैके कहमु ना कारण नों चाखा नि सागो पान आं तो बुलानो सका जोनोटिक डिजीज
1: माने चाय तो हानि चाव
0: कहम ता स्वाइन फ्लू माने जे एन्थ्राक्स माने माने आम रोग बेमारो आज जीवाणु रोग टी तक सको पानी सलो मानो बार्ड फ्लू रोग टक रोग कथे बार्ड फ्लू रोग मानो आम
1: चाय डॉक्टर हमारी कक जे जरा माल माथा बेमार भाई कक रंग जेरी शुक्र बैसा मान बी जो बुसकानी सला जर माखाई हाई हाई गुबुन कक बथम दी सान बी जो जरा रिंफी खाजन दाखा सैमान खाना सीखाना जे अटी जरा माल माता बेमार भागे का सुना तय भाई के नागिन खाने के जरा कर
2: हाबी कक पान्डा खाना आकाशवाणी आगरतला तब खाना जदुनी रेसापू रेसामुगो खरान रोआन पूर्ण रूपिनी।

स्नि फेब्रुवारी तालो जेंजागान आबनो जासारनानि बागै हास्ते हापांते लुकु लेखामुं नायखुं गोथालायि तियार ओंलायि दंगो खनानि सिमि अ जुलाइ साल थामजिसा जरा सागबायथां लेखानानि बेरेमो बरक रक नगो आचुगुइन अनलाइन पोर्टल se.census.gov.in नि बिसिंतै जानिजा ककथुम सागबायथांनो फिलाप खालाय मानानो दागिफांगते बसाखा सागबायथां लेखानानि सामुंगो बरक रक बायथांनि मोबाइल नम्बर बाय वान टाइम पासवर्ड नि बिसिंतै पोर्टालो लग इन खालाय मानबायानो सय ककथुम रुमानि उल कायसा सेल्फ एन्युमारेशन्स आइडिस नामजागानो उल अ एस आई आई डि फुनुखेन डेटा आमजगै नायजागानो तै सय हिनै सायमानानो आकाशवाणी आगरतला केन्द्रनि अककथुमा खनाय तंबायो आकाशवाणी ककतुमा अपडेट मानने बगै लग इन खाइडी www.newsonair.com न्यूज अन एआईआर एप ते ट्विटर बाई फेसबुक प्लेटफर्म एआईआर न्यूज एलार्ट यूट्यूब नाइडी न्यूज अन एआईआर अफिशियल अबनो कारिबो आकाशवाणी आगरतला केन्द्रनि ककतुमा अपडेट मानाखे ट्विटर एबा एक्सेंडेलो आकाशवाणी न्यूज आगरतला फेसबुक एआईआर न्यूज आगरतला ते यूट्यूब आकाशवाणी न्यूज आगरतला नायनानी नांगानो मंत्री बखरक नरेंद्र मोदी अ तालनि नैजि दक सालमारी ककतिसालनि फुं दामजिसाव आकाशवाणीनि मन की बात पान्दाव हाकतरते बुइहा कतरनि लुकुरकबाय ककलाम सालायानो अब अंगानो मन की बातनि फिल सारा थामजि दक बेरेमनि पान्दा मंत्री बखरक लुकुरकन बरकनि वानसकमा खाकामा कक मन की बात रहरनानि कबखा माइगभ अपेन फोरम एबा नमो एप्स लुकुरक वानसकमुं रकन रहरै मानबायानो टोल फ्रि नम्बर 1800117800 अ नम्बर कल खलायै हिन्दी एबा इंराजी बाय वानसकमुं रकन रेकर्ड खलायै मानबायानो आबनो कारिबो 1922 नम्बर मिसकल दिबै जे लिंक मानानो अबतिब एसएमएस खलायै मानबायानो फोन लाइन अ तालनि बुसकां सालनैथि ब्रै सालमारि जरा फियगजा तंगानो मंत्री अक्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा हास्तिनि आलंग नग रग खा काहाम तंगनानि बागै गोबां खलायै जुदा जुदा थोंमुंतै दारा खामग्राय फोरोंनानि बागै दागिखा तिनि TIFTनि कन्फारेन्स हल आलंग नग रग्न काहाम खलायनानो तैयै संसारजाक पान्दाव ब अ दागिमुं रोखा आलंग नग रग तंगनाय रग्न चामुं काहामतै सा खामनो तैयै जाय जायखे कक बितिरिमा रग्न सामुंगब थांनानि दागिखा ककलामो मानजाखा आलंग मन्त्री सान्तना चाकमा सचिबक्रा जेके सिन्हा हास्ते पुलिसनि दागिनाय अक्रा अनुराग नोंजाखनाय तैतै सा खाम नायखुंनि सचिब अभिषेक सिंह आइजि प्रिजन असीम साहा ताबुक हायुंकाप फुटबलनि ककतुमा फुटबल हायुंकाप सेमी फाइनेल कायनिनि बाताइमुं पाइखा पुइला सेमी फाइनेल स्पेन नै बुकजा गोल बाय फ्रान्स नो मेचे नै फाइनेल काशाका तै कायसा सेमी फाइनेल हायुं चैम्पियन आर्जेन्टिना इंग्लैंड नो नैसा गोलनि फेर बाय मेचे नै तै बायसा हायुंकापनि फाइनेल काशाका यांगफिल्ड थाम थाइनि बागै अ जुलाइनि सालचि चार सालमारिव फ्रान्स बाय इंग्लैंड बातायलायानो जुलाइनि सालचि चुकु सालमारिव निउ जार्सिनि मेटलाइफ स्टेडियम फाइनेल मेच ओंगानो आरो चैम्पियन ओंनानि बागै स्पेन बाय आर्जेन्टिना थांलायानो ताबुक नबार्तिबारनि ककतुमा भारतनि नबार्तिबार नायखं बुसकां सालनि सालका सालचि सालका भारत सालका उत्तर प्रदेश आमचायो गोबां वातै वावै मानुहनै हजाकमुं रोखा यांग आगरतला नबार्तिबार नायखंनि बखाक्तै बुसकां दामनैथि ब्रैयो सालथां हांकर सिपाहिजला गुमति सालचितै खुवाय हांकर गोबां वातै वावै मानुहनै हजाकमुं रोखा नबार्तिबार नायखं खना सालनि साखानि तुंमारि थामचि थामते खामानि नैथि दक डिग्री सेल्सियासनि गानागिनि तंगानो दिनै सालनि साखानि तुंमारि तंमानि थामचि ब्रैतै खामानि नैथि दक दशमिक ब्रै डिग्री सेल्सियास ককতুমা পাইনানি সেখান ককতুমা বুবাগ রক তেই বাইসা সাফিরো মন্ত্রী বক্রক নরেন্দ্র মোদী খনা হরিয়ানা জিন রেলওয়ে স্টেশন নিশিমি জিন তাই সুনিপত নিবিসিং ভারত নি পুইলা হাইড্রোজেন ট্রেন চেঙ্গে রিওয়ান খনা নিশিমি হাস্তে ও চেঙ্গজাগান লুকুলে খামং নৈ সাই নৈ চিসিনি হা কতর নিলগি হাস্তে ও ব রথযাত্রাতে যাই যাইখে বরম রুবই পালাই জাগি থঙ্গো बुसकां ककतिसाल निउ जार्सिनि मेटलाइफ स्टेडियम हायुंका फुटबल फाइनल मेच आर्जेन्टिना बाय स्पेन थोंलायानो ककब्रक बाय ककतुमा परिमुं तिनिनि बागै अरन' पाइखा उलनि ककतुमा आवाय ओंगानो खोनाफुं दामस्नि तामै सति ब्रैजिव'

0: এতক্ষণ ভক্তিমূলক গান শুনলেন। অনুষ্ঠানে শিল্পী ছিলেন এম এস শুভলক্ষ্মী। আকাশবাণী আগরতলা, এখন শুনবেন দিল্লি কেন্দ্রের সংবাদ।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সে সমাচার সন্ধ্যা কে সাথ মে মুনীশ শর্মা। मुख्य समाचार। भारत ने एक अरब से ज्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू। हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु शामिल हुए। अमरीका ने उत्तरी ईरान तक हमले किए और नौसैनिक घेराबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर गोलीबारी।

0: ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक हासिल कर लिए हैं और कार्डिफ में भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में ये मात्र 19% था। उन्होंने कहा कि यह सबका साथ सबका विकास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस साल 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत 1,600 से ज्यादा वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे और लगभग 1 करोड़ किसानों से उन्होंने संपर्क किया। वैज्ञानिक विशेष रूप से उन जिलों में पहुंचे जिनके अलनीनो से प्रभावित होने की आशंका है। उन्होंने बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पिछले वर्ष के दौरान कई उन्नत किस्म की फसलें विकसित की हैं।
1: एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलिएंट है, 29 बायोफोर्टिफाइड है, ये विकसित की है। बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अलनीनो के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजना बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूँ ICR कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमरीका के समूह में शामिल हो जाएगा। इस रेलगाड़ी को 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने के लिए डिजाइन किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा आज से शुरू हो गई। ये हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। यह ऐतिहासिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में नमो हवाई अड्डे के उद्घाटन के बाद हुई है। एक रिपोर्ट।
4: केंद्र शासित प्रदेश दमन

0: और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बीच सीधी हवाई कनेक्टिविटी से इस क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और निवेश को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यात्रियों को अब लंबी सड़क या रेल यात्राओं पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जिससे यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। स्थानीय प्रशासन के अनुसार जल्द ही नमो एयरपोर्ट से देश भर के अन्य प्रमुख शहरों में हवाई सेवाओं को बढ़ाने की योजना पहले से ही चल रही है। प्रवेश अड़ियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने आज कहा कि उड़े देश का आम नागरिक योजना के अगले चरण का उद्देश्य अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों तक कनेक्टिविटी को बढ़ाना और 4 करोड़ लोगों को विमान यात्रा में सक्षम बनाना है। नई दिल्ली में कार्यशाला में श्री नायडू ने कहा कि सरकार हवाई टिकटों की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए कई उपाय कर रही है।
2: एविएशन एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसको हमें डायनेमिक फेयर प्राइसिंग के तहत हम आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल प्रैक्टिस है। कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाना है तो एयरलाइंस को वो डायनेमिक प्राइसिंग की सुविधा हमें देनी चाहिए, जो भारत में भी हम एक्सटेंड कर रहे हैं। कई जगहों पे अगर ऐसा लगता है कि फेयर्स हद से ज्यादा हो रहे हैं तो हमने ये पाबंदी लगाया कि ये प्राइसिंग को रेगुलेट करेंगे।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को देश भर में व्यापक स्तर पर लागू करने के लिए वैज्ञानिक संस्थानों, उद्योग और राज्य सरकारों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। डॉक्टर सिंह ने नई दिल्ली में CSIR केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के एक वर्षीय प्लेटिनम जयंती समारोह में ये बात कही। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के शासन में तेजी से सकारात्मक बदलाव के कारण भारत वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचा है। चेन्नई में उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से सरकारी योजनाएं देश के सुदूरतम क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक नागरिक तक पहुंच रही हैं। तृणमूल कांग्रेस की एक और राज्यसभा सांसद कोयल मल्लिक ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष CP राधाकृष्णन से मुलाकात कर अपना इस्तीफा उन्हें सौंपा। वो इस साल अप्रैल में राज्यसभा के लिए चुनी गई थी। कोयल तृणमूल कांग्रेस की चौथी राज्यसभा सांसद हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। इससे पहले सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराइक ने इस्तीफा दिया था और बाद में वे भाजपा में शामिल हो गए। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित आतंकी वित्त पोषण और अवैध घुसपैठ नेटवर्क से जुड़े एक मामले में आज पश्चिम बंगाल सहित देश भर में 13 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। एक रिपोर्ट।
3: ये मामला उत्तर प्रदेश ATS द्वारा रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने और उनके पुनर्वास में कथित रूप से शामिल संगठित गिरोह के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल के कलिकपुर में हरौरा अल जमियतुल इस्लामिया दारुल उलूम में तलाशी के दौरान 40 लाख रुपए नकद और सोने के सिक्के बरामद हुए। जांच के दौरान एक मजबूत वित्तीय नेटवर्क का खुलासा हुआ है जिसमें कुछ धर्मार्थ ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली गई। सुबह से लगातार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डंडा पर इस पवित्र दृश्य को देखने के लिए जुटे हुए थे।
4: पुरी का पवित्र शहर भक्ति के सागर में आज डूबा रहा, क्योंकि पहंडी विजय और छेरा पहरा की पवित्र रस्म में पूरी होने के बाद लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के भव्य रथों के ग्रैंड रोड पर खींचने की रस्म में हिस्सा लिया। रात होने पर रथ खींचने का काम आज के लिए रोक दिया गया है और पवित्र श्री गुंडीचा मंदिर तक की दिव्य यात्रा कल फिर शुरू होगी। हालांकि श्री गुंडीचा मंदिर के पास भगदड़ जैसी घटना से उत्सव का माहौल प्रभावित हुआ, जिसमें खबर है कि एक भक्त की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। गंभीर रूप से घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पतालों में भेजा गया है। उड़ीसा सरकार ने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही उत्सव के बाकी दिनों के लिए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के इंतजाम और कड़े कर दिए गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, पुरी।
1: है इस बीच गुजरात, झारखंड और दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न स्थानों पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हर्षोल्लास के साथ निकाली गई।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कच्छ के नववर्ष आषाढ़ी बीज के अवसर पर कच्छी समुदाय को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आषाढ़ी बीज कच्छी समुदाय की चिरस्थायी सांस्कृतिक विरासत और मजबूत भावना को दर्शाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत नवीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई है और कहा है कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे पांचवीं या छठी कक्षा में शुरू करना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सकें। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: घरेलू शेयर बाजार में आज सेंसेक्स में केवल एक अंक की बढ़त हुई और ये 77,187 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 6 अंक गिरकर 24,073 पर पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार के मिड कैप में 0.4% और स्मॉल कैप में 0.1% की गिरावट आई। वहीं अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 9 पैसे गिरकर 96.35 रुपए पर बंद हुआ।
0: अमरीका ने ईरान पर हमले और तेज कर दिए हैं। आज उत्तर में स्थित ठिकानों को निशाना बनाया गया और अमरीकी नौसैनिक नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर भी गोलीबारी की गई। जवाब में ईरान ने क्षेत्र में अमरीका के सहयोगी देशों को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमरीका पुलों और बिजली संयंत्रों को निशाना बनाता है तो ईरान क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे पर व्यापक हमले कर सकता है। इंडोनेशिया के जकार्ता में भारतीय मुक्केबाजों ने एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक अपने नाम कर लिए हैं। अंडर 23 वर्ग में विश्वनाथ सुरेश और गंगा ने स्वर्ण और वंशज ने रजत पदक अपने नाम किया। अंडर 19 में आदित्य और शुभम राजपूत ने रजत पदक हासिल किए। कार्डिफ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 42 ओवर में 8 विकेट पर 214 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों में पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 3 से 4 दिनों तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में तथा 22 जुलाई तक राजस्थान में भी वर्षा होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने मछुआरों को 21 जुलाई तक दक्षिण पश्चिमी अरब सागर में और अगले 2 दिनों तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी और आसपास के इलाकों में न जाने की सलाह दी है। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने 1 अरब से ज्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज के दायरे में लाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू हुई। हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु हुए शामिल। अमेरिका ने उत्तरी ईरान तक हमले किए और नौसैनिक घेराबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर गोलीबारी की। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक हासिल कर लिए हैं। और कार्डिफ में भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी है। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে আকাশবাণীর আগরতলা কেন্দ্র থেকে। এখন শুনবেন আধুনিক গান, শিল্পী মৃণাল চক্রবর্তী।